मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में

0: रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र जैन की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए यशपाल सिंह राठौड़ से, विषय है कर्मयोग।

गीता में कर्म योग पर इतना विशद विवेचन है कि मद भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। इसमें एक बात ये स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है, हमारा तो वहां भी कर्म ही होता है। जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। यह भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है, परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषां विद्या

0: यानि तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। आप जानते हैं किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए करना होता है उद्यम परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है, विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्मयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहाँ भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित यह है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरण वै मधुविदंती, यानी चलते रहो निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे यशपाल सिंह राठौड़ से। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिहारा वास्ते कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे, संतुलित आहार कैसे बनाएं। चौपाल में संध्या 7:00 किसान भाई ईमेल और पत्रों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे, पत्रोत्तर। बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, गीत भी सुनवाए जाएंगे। मोरमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगी।

0: परी देवी। मानस का नाप सुना करते हैं, प्रातः 7:20 पर भाग संख्या होगी 256। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। कुछ भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। सुबह 10:00 हम आपको हिंदी काव्य गोष्ठी सुनवाएंगे। इसमें प्रतिभागी कवि और कवित्री होंगे किरण बादल, मंगत बादल, संदेश त्यागी, चंद्रभानु त्यागी और कृष्ण कुमार आशु। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दिन में 2:30 और संध्या 7:45। दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12:05 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हेलो मन भवन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 10:00। संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता होंगी लक्ष्मी। 12:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे पर्यटन, कश्मीर की सैर, पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, वजन घटाने में सहायक सब्जियां, काम की बातें, फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। युववाणी में शाम 5:00 कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आपकी पसंद। कर्तव्य निष्ठा पर चर्चा और आज के इतिहास पर भी जानकारी दी जाएगी। सराकी का समय रहेगा शाम 6:05। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:30 पर और 9:15 पर। जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर प्रसारित की जाएगी, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3:00, स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर, चर्चा के विषय रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पूर्व आईपीएस अधिकारी ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूता

0: तथा विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद

0: शांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the Member Secretary in the committee. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. The Supreme Court will today pronounce judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. The controversy primarily centres around the ECI's requirement that voters whose names were absent from the 2002 electoral rolls or the 2003 rolls in certain states must establish ancestral linkage to a person whose name appeared in those electoral rolls.

0: electoral rolls. The petitioner's side had argued before the apex court that the condition could potentially disenfranchise genuine voters, particularly marginalized and migrant populations who may not possess documentary proof tracing their ancestry to earlier electoral records. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. CBSE emphasized that no security breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work. The board stated that on-screen marking system has been implemented to enhance transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. The board also reassured the concerned that robust safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. In Punjab's municipal general elections held yesterday, nearly 64% voting was recorded. The polls were held to elect representatives in 102 civic bodies, including 8 municipal corporations, 75 municipal councils, and 19 Nagar Panchayats. The counting of votes is scheduled to take place on 29th May 2026. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has expressed confidence that the next chapter of the India-Canada economic partnership will be driven by trust, leading to the shared prosperity of the two nations. Addressing the opening ministerial plenary session from political reset to commercial delivery in Toronto, Canada last night, Mr. Goyal emphasized that trust between the nations is unlocking new trade and investment opportunities as both sides push for comprehensive economic partnership agreement.
1: Our effort at the government level is to make it easier to work with each other. Free trade agreement, of course, will help with reducing barriers to trade, tariff and non-tariff. It will open up a plethora of investment opportunities, but more significantly will be the messaging that will go out with the free trade agreement or the comprehensive economic partnership. We will achieve a very good, fair, equitable and balanced agreement, which will define the roadmap as the two economies power on.
0: India Meteorological Department has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती रवास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व।
3: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज आप बात करांगा पशुओं के आहार में खनिज तत्वों को के महत्व हो है। आप जो पशुओं ने आहार देवा वो एक तो संतुलित होना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार में जहाँ ध्यान ध्यान है कि पौष्टिक तत्व जहाँ शर्करा प्रोटीन वसा खनिज तत्व और विटामिन ए उचित और मिश्रित अनुपात में होना चाहिए। मिश्रित अनुपात को मतलब है कि ना तो ज्यादा हुए और ना ही कम हुए। और जब आप पशुओं ने संतुलित आहार देंगा तो यह अपना पशु जी का स्वस्थ रहेगा और विंग सागे सागे पशुधन होने वालों जो उत्पादन है जहाँ दूध है ऊन है और मांस है वो उत्पादन भी ज्यादा हो सी। और पशु आहार में अगर जो खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो पशुओं में कमजोरी आ जाए और पशुओं ने कई प्रकार का रोग भी लाग जाए और कई बार आप जो टेम सुएंगे गौर न करा तो पशुओं की मौत भी हो सके। तो आवश्यकता होने पर आपने ज्यादा मात्रा में खनिज लवण देना चाहिए और कई बार आपने इन चीज को ज्ञान को नहीं हुआ कि आपने कितने देना चाहिए तो या तो आप कम दे दें या ज्यादा देवा तो बिंगो भी पशुओं ने नुकसान हो सके। तो इन बात को जिको आपने जिका पशुओं का जिका डाक दर्जी हुआ बहु आप संपर्क कर लिया और बहु इन बात को आप पूछ लिया कि आप पशुओं ने कितना जिका खनिज लवण भी देना है। अब बात करा खनिज तत्वों की। खनिज तत्व भी तो दो भागों में बांटेड़ा है। पहलो भाग जिका तत्वों की पशु के शरीर में ज़्यादा आवश्यकता रेवे अन्य भी आप मुख्य तत्व भी बोल दें इनमें कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और सल्फर ए जिका है।

0: मुख्य तत्व होवे, और जिका दूसरा तत्व है जिका की आवश्यकता कम होवे अना आप गुण तत्व भी कह दें। तो इंगमा जिया मुख्य रूप से अपने लोहा, जिंक, तांबा, मैगनीज, कोबाल्ट, आयोडीन, लोरिन, सिलेनियम और क्रोमियम ए जिका ए गुण तत्व होवे। तो अब आप बात करा पशुओं में खनिज तत्वों की कमी, पशुओं में जिका प्रभाव आवे जी कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए, तो इंगी कमी से जिका नवजात पशु हो वे रिकेटस नाम गो एक रोग हो जाए जिका सु हड्डियां गो संपूर्ण विकास होवे कोनी और कई बार की है विकास रुक जाए और जिका नवजात पशु है वे कमजोर भी हो जाए और जिका ब्यान आला जिका पशु है गाय भैंसा है वे टेम हुई पहला अगर जे कैल्शियम की कमी हो जाए तो वे कमजोर हो जी और दूध को उत्पादन भी कम हो जाए और इन्हें अपने जिका डॉक्टर हो पशुओं का भी इन्हें मिल्क फीवर रोग भी बता दे। तो इंगो जब आप टेम से उपचार न करा इन पर ध्यान न देवा तो पशु की मृत्यु भी हो जाए और फास्फोरस की कमी पशु ने भूख कम लाग जाए और इसमें एक पाइका नामक रोग हो जाए जिकों की पशु माटी खान लाग जाए। कई बार के जे दीवार के कन्ने जे बांधेड़ा हुआ पशु तो दीवार ने चाटन लाग जाए, मिट्टी, कपड़ो, लकड़ी ए इसी चीजा खान लाग जाए। पशु जे इतना दीवार चाटे या माटी खावे तो भी मैं फास्फोरस की कमी हो और बिना फास्फोरस दे के आप दूर कर सका। मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो जिका दुधारू पशु है हमें दूध जिको है कम हो जाए और एक रोग हुआ जिका को नाम हुआ हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी। मैग्नीशियम तत्व की कमी होने के कारण मैग्नीशियम लवण का इंजेक्शन द्वारा इनको आप इलाज कर सका। आयोडीन तत्व की बात करा तो आयोडीन तत्व की कमी से पशुओं में घिंगा नाम को रोग हो जाए, यूं थायराइड ग्रंथि हो भी कार ज्यादा बड़ो हो जाए और ईसु के थायरोक्सिन हार्मोन बनो कम हो जाए और या फिर बंद हो जाए और ईसु के गर्भावस्था के दौरान अगर इन तत्व की कमी हो जाए तो जिका अपने बच्चा पैदा हो बांगे शरीर पर या तो बाल या ऊन जिकी है बा कोनी हो और बहुत ही कमजोर हो सी और कई बार तो बच्चों मृत भी पैदा हो। कई बार आप देखा आप डॉक्टर ने दिखावा तो बेके दे जी पशुओं में खून की कमी है तो आ कमी लोहा खनिज तत्वों की कमी के कारण हुए। यूं अनीमिया नामक एक रोग हो जाए जिके शरीर में कमजोरी आ जाए और पशु या थकेड़ो थकेड़ो महसूस करे और भूख भी कम लागे और दूध को उत्पादन भी कम हो जाए और जो पशु को विकास है वो भी बहुत कम हो तो इनको भी अपन विशेष ध्यान रखना होवे और इन खातर विशेष कर जिकी हरी पत्तियां का जिका पदार्थ हो जिया चारो है, रिजको है, बरसीम है, अंगमा खूब हो तो वो अपने पशु ने ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो किसान भाइयों अपा बात करा कि जे खनिज तत्वों की पशुओं में कमी हो जाए तो बिंगो निवारण करने खातर अपन के करनो चाहिए तो बिंग खातर ए जिका भी तत्वों की कमी हो जाए तो अंग पूर्ति करके अपन पशुओं ने आप बीमार होनो बचा सका। और इन अलावा जिका पशुपालक भाई है बने बाजार में कई प्रकार का जिका है बे खनिज तत्व और मिश्रण जिका है बे उपलब्ध है बे अपन बाजारों लेगे बे पशुओं ने अपन जितनी बने जरूरत है बी हिसाब बितना प्रतिशत बने अपन देना चाहिए। और इस अलावा भी जे कोई रोग पशुओं में अपन दिखे अपन लगे कि भी पशु दूध पूरा कौन दे वे या पशुओं को विकास को नहीं होवे तो अपन जिका पशुओं का डाक दर्जी है बन बुला गए पशुओं ने एक बार चेक करवा लेवा और बहु सलाह ले लेवा तो भी अपन बता दिया गया कि पशु के अंदर के रोग है या के खनिज तत्वों की कमी कारण जिको रोग है वो किया दूर हो सके तो बहु भी अपन सलाह ले सका। तो किसान भाई और जिका पशुपालक भाई है वहाँ सब बातों को ध्यान रखना है जिका सु अपने पशुओं को विकास अच्छा हो और अपने जिके पशुओं से होने वाला जो उत्पादन है वो भी भरपूर मात्रा में हो जिका सु अपनी आमदनी में भी कोई कमी ना आवे। अब मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: खेती रावस्ती कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व विषय पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन कलाकार हैं प्रेमचंद सांखला।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रेमचंद सांखला। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 256।

लक्ष्मण को श्री राम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार

सुनकर सीता के मन में संशय उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर लापटकते हैं और चूँच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 256। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, वृक्षों को जीवनदायी माना जाता है क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक तत्व यानी शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोख कर पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं। पेड़ वायुमंडल से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को धीमा करते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये बादलों को आकर्षित करते हैं और बारिश लाने में भी मदद करते हैं। मानव जाति से जीव जंतुओं तक सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फल, अनाज और सब्जियां पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। नीम, तुलसी और पीपल और अश्वगंधा जैसे हजारों पेड़ पौधे आयुर्वेदिक और आधुनिक दवाओं के मुख्य स्रोत हैं, जिनसे रोगों का उपचार होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखती हैं, जिससे भूक्षरण और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। जंगल में बड़े बड़े अनगिनत पेड़ पक्षियों, जानवरों और कीट पतंगों का प्राकृतिक घर होता है। वृक्ष प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो निस्वार्थ भाव से सभी के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

दोस्तों, तेज़ गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में हमें गर्मी से बचने के उपाय भी करने चाहिए। गर्मी से बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखें। दोपहर में तेज़ गर्मी के वक्त कम से कम बाहर निकलें। बाहर जाना ज़रूरी हो तो बाहर जाते समय हमेशा सूती दुपट्टा या टोपी का इस्तेमाल करें। छाते का भी उपयोग कर सकते हैं। धूप की हानिकारक किरणों से बचाव के लिए यूवी प्रोटेक्टिव चश्मे भी पहनें। पानी का उपयोग थोड़े थोड़े समय में करते रहें। शरीर में पानी और नमक की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी और ORS भी ले सकते हैं। डाइट में तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फल शामिल करें। गर्मी में हमें भारी वसा युक्त और ज़्यादा मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। हल्के रंग के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा मिल सके। कोशिश करें कि आप ठंडी या हवादार जगह में रहें। लू लगने के लक्षण जैसे चक्कर आना, तेज सिर दर्द या बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने पर तुरंत ठंडी जगह पर बैठें। यदि हालत में सुधार न हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

दोस्तों, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों को उनकी पारंपरिक कौशल को विकसित करने और उन्हें आधुनिक बाजार की ज़रूरतों के अनुसार ढालने में मदद करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना के द्वारा सिर्फ उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की सहायता की जाती है। इस योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सहायता दी जाती है। यह योजना न केवल पारंपरिक कला शिल्प को संरक्षित करती है, बल्कि कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करती है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इसी के अतिरिक्त हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ा जाता है।

सुप्रभात कार्यक्रम में अब सुनिए कालिया फिल्म का नगमा, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं।

सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए शोर फिल्म का नगमा, आवाज़ें मुकेश लता मंगेशकर और साथियों की हैं।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

0: प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी

0: Shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes, and the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express, in its editorial titled India First Can Converge with America First, writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरेसानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तशकील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिरे मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स 1 डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है

0: इस डायरियां पेश की। एनआईए के जराए के मुताबिक इस वाके के दिन की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हममनसब पेनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में एक दो दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की समत एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम चौरासी के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए

0: 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैनुल अक़वामी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भजन। कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे जगजीत सिंह। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों को हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
2: देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश

0: सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शेखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
2: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है, और उसको हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है, और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़े।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ. मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
1: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है, वहीं कुछ जिलों में

0: पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
1: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्यौहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल में सुनिए गवरी देवी को।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: मोर मंगल कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गमरी देवी को।

मोरमंगल में अभी आप गंवरी देवी को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बेताब से। आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से

0: अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: फिल्म संगीत में अब सुनिए रॉकी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं, गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

लीजिए, सुनिए ये वादा रहा फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं, शब्दकार हैं गुलशन बावरा और तर्ज आर डी बर्मन की है।

आप सुनिए बेटी बेटी फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की है, गीत हसरत जयपुरी ने लिखा है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लैला मजनू फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब हम आपको हिंदी काव्य गोष्ठी सुनवा रहे हैं। प्रतिभागी कवि और कवित्री हैं किरण बादल, मंगत बादल, संदेश त्यागी, चंद्रभानु त्यागी और कृष्ण कुमार आशु।
1: आकाशवाणी के सूरतगढ़ केंद्र पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच जो कवि उपस्थित हैं, पहले मैं उनका परिचय आपको दे दूं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मंगत बादल, साहित्य अकेडमी दिल्ली, साहित्य अकेडमी राजस्थान और अनेक ऐसी साहित्यिक संस्थाओं से आप सम्मानित हुए हैं। आप अनेक विधाओं में लिखते हैं जिनमें व्यंग्य भी है, कहानी भी है, कविता भी है, कई किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मंगत बादल का। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती किरण बादल। आप बाल साहित्य में विशेष दखल रखती हैं और कविताओं में, कहानियों में भी समानांतर रूप से लिखती रही हैं। आपकी किताबों को भी अनेक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी शामिल है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, एक ऐसा नाम जो इस अंचल में साहित्यिक साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध भी है और जाना भी जाता है। डॉक्टर कृष्ण आशु कहानीकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, व्यंग भी लिखते हैं, कहानियां भी कहते हैं और ये गोष्ठी इस अर्थ में भी समृद्ध है कि ये तीनों साहित्यकार केंद्रीय साहित्य अकेडमी से भी सम्मानित हैं। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज की इस गोष्ठी में डॉक्टर कृष्ण आशु जैसे साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की इस गोष्ठी में श्री चंद्रभानु त्यागी श्री गंगानगर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप गीत के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान रखते हैं और बहुत अच्छे स्वर में गाने के लिए आपको जाना जाता है और मैं संदेश त्यागी इस गोष्ठी का संचालन करने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। तो हम इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। मैं सबसे पहले एक ऐसे कलमकार को आमंत्रित कर रहा हूँ जो, जैसा मैंने कहा, कि वो कहानी, कविता, व्यंग्य, लेख सभी में बराबर के हिस्सेदार हैं लिखने में। और मुझे याद आया सलीम कौसर की पंक्तियां के, कहानी और मोहब्बत में सदा से जंग जारी है। कहानी और मोहब्बत में सदा से जंग जारी है, कहानी में कई किरदार हम खुद फर्ज करते हैं, मोहब्बत में कोई किरदार भी फर्जी नहीं होता। कहानी को बढ़ाते हैं सभी किरदार मिलजुल कर, मोहब्बत अपने किरदारों को खुद आगे बढ़ाती है। और कहानी में कई किरदार अक्सर मर भी जाते हैं, मोहब्बत अपने किरदारों को मरने ही नहीं देती।
2: क्या बात है।
1: तो ऐसा शख्स जो कहानी और मोहब्बत की जंग को भुला करके उनको साथ लेकर के चल रहा है और नई कहानियां गढ़ रहा है, ऐसा एक शख्स हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु को कि वो आए और अपना रचना पाठ करें। डॉक्टर कृष्ण आशु।
2: धन्यवाद भाई संदेश। मैं आपके समक्ष अपना एक गीत

0: तहत मैं पढ़ना चाहूंगा।
1: स्वागत है।
0: नफरतों का दौर है कुछ तो मेरे यार कर। नफरतों का दौर है कुछ तो मेरे यार कर, प्यार कर तू प्यार कर, प्यार कर तू प्यार कर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक बीज बोएगा तो फूल खिल जाएंगे। एक बीज बोएगा तो फूल खिल जाएंगे, मीठे बोल बोल दे नेह बरसाएंगे। झूठ अहम छोड़ के सोच अपनी मोड़ के, झूठ अहम छोड़ के सोच अपनी मोड़ के, एक नई धुन बना प्रेम गीत गाएंगे। इस जमी पे आसमां पे कुछ तो एतबार कर, प्यार कर तू प्यार कर, प्यार कर तू प्यार कर।
1: बहुत बढ़िया।
0: चार दिन की जिंदगी ऐसे नहीं ठेल तू, चार दिन की जिंदगी ऐसे नहीं ठेल तू, कब कहां पे आ मिले सबसे रखना मेल तू। जिंदगी है एक जुआ इससे रोज खेल तू, डरना काहे मौत से बढ़ के आंखें चार कर, प्यार कर कर प्यार कर, प्यार कर तू प्यार।
1: बहुत अच्छे।
0: सरहद ने दी आवाज सुन ले तू गौर से, सभी देशवासियों के नाम ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ। सरहद ने दी आवाज सुन ले तू गौर से, ये जमी बुला रही निकल अपनी ठोर से। सोच नहीं रात का मोल तो है बात का, सोच नहीं रात का मोल तो है बात का, माँ तो कहे बच्चों से कहती नहीं और से। कर्ज तुझ पे देश का है इस पे जान इसार कर, प्यार कर तू प्यार कर, प्यार कर तू प्यार कर।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: छोटी छोटी दो तीन कविताएं हैं।
1: बिल्कुल स्वागत।
0: पहली कविता का शीर्षक है मेरा पुरुषार्थ। धर्म, मेरा धर्म तुम हो। अर्थ, तुम्हारी खुशी ही है मेरा अर्थ।
1: बहुत बढ़िया।
0: काम, तुम्हारी कामना के सिवा कुछ भी नहीं। और मोक्ष, तुम्हारी स्नेहिल दृष्टि। मेरे चारों पुरुषार्थ तुमसे हैं, तुम नहीं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरे लिए शब्द मात्र हैं, और मेरा जीवन है पुरुषार्थहीन, पुरुषार्थहीन।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: अपने शहर को लेकर के एक कविता लिखी है। यह शहर, इस शहर ने छीन लिया मेरा प्यार, लूट लिया मेरा चैन, हड़प लिया मेरे हक। इस शहर ने छीन लिया मेरा प्यार, लूट लिया मेरा चैन, हड़प लिए मेरे हक, फिर भी नहीं छूटता मुझसे यह शहर। दोस्त कहते हैं, दोस्त कहते हैं क्या रखा है इस शहर में, माया नगरी में आ जाओ, तुम्हें काम दाम और नाम सब मिलेगा। मैं सोचता हूँ माया नगरी में बहुत कुछ मिलेगा, मैं सोचता हूँ माया नगरी में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं, इस शहर में सब कुछ है, क्योंकि यहाँ है तुम्हारी याद।
1: बहुत अच्छे।
0: क्योंकि यहाँ है तुम्हारी याद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
0: और अंत में एक बिल्कुल छोटी सी कविता है।
1: स्वागत।
0: तुम्हारी याद,
1: तुम्हारी याद।
0: प्रेम बिना जीवन बियाबान जंगल, प्रेम बिना जीवन बियाबान जंगल, और तुम्हारी याद इस जंगल में रोहिड़े का फूल। और तुम्हारी याद इस जंगल में रोहिड़े का फूल।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत
0: धन्यवाद।
1: ये थे डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, और बहुत खूबसूरत कविताओं के साथ प्रेम का जो संदेश आपने दिया वो बहुत खूबसूरत बात रही। और मुझे याद आया एक शेर के, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तो ये जो बात है, ये पूरा का पूरा मैसेज आपके बीच, हमारे बीच आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी। अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमती किरण बादल को, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। रायसिंह नगर से आप आई हैं, पेशे से आप शिक्षिका रहीं, और जैसा कि मैंने बताया, साहित्य लेखन में, कविताओं में, बाल कविताओं में, बाल कहानियों में आपकी विशिष्ट दखल है। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज़ दूंगा श्रीमती किरण बादल।
2: धन्यवाद संदेश जी। जैसा कि आपने बताया, ये बाल कविता ही है। जब सर हिंद के नवाब ने छोटे साहबजादों को, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को पकड़ लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उन्हें बाध्य किया, तो वे नहीं माने, अंत तक वे नहीं माने। तो इसी को लेकर ये सवाल जवाब है नवाब से और बच्चों के, तो उसी पर ये कविता है। और आज तो भारत सरकार ने इन बलिदान के दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया है पिछले साल से, तो इसी संदर्भ में ये कविता है। चल चंचल कलम आज चलते हैं गुरुओं के दरबार में, संगीत भक्ति का रचा जहां तलवारों की झंकार में, बलिदानों की गौरव गाथा अपने शौर्णित से लिखते हैं, समय नहीं धुंधला पाता वे दीप शिखा से जलते हैं, ऐसे वीरों की याद आज भी हमें राह दिखलाती है, जाति धर्म

0: या संप्रदाय के नए अर्थ सिखलाती है। जोरावर फतेह सिंह भी थे ऐसे ही शूरवीर बालक, कर्मवीर निर्भीक अपने वचनों के थे सच्चे पालक। बालक क्या थे, दो नैन ही थे गुरु गोविंद सिंह जी के दाएं बाएं, पर सच तो यह कि जीवन की लेती है परीक्षा बाधाएं। दो लाल गुरु जी के प्यारे सर हिंद शासक ने पकड़ लिए, सिंह शावकों को छल से पिंजड़े के भीतर जकड़ लिए।
1: बहुत अच्छे।
0: फिर बोला धर्म बदल लो तुम, मैं तुमको राज बख्श दूंगा, जितनी भी मांग करोगे तुम वे सारी आज बख्श दूंगा। सुख हैं जितने भी धरती पर सब एक साथ पा जाओगे, जीवन में नहीं कमी होगी यदि मेरा दीन अपनाओगे। जोरावर भड़का जोरों से बोला तेरी हस्ती क्या है रे कायर, नहीं जानता तू कि वीरों की मस्ती क्या है। मौत सामने जब होती वीरों का साहस बढ़ता है, रे मूरख सुन घिसने पर ही चंदन मस्तक पर चढ़ता है। तप तप कर आंच में ही सोना कुंदन बनकर निखर जाता, वह वीर धन्य जो धरती पर बनकर खाक बिखर जाता। उन नन्हे वीरों की वाणी सुन छा गया सभा में सन्नाटा, सर हिंद शासक यों चकराया काले नागों ने जों काटा। कुछ देर सोच कर के मन में रचकर षड्यंत्र कोई, वह धीरे धीरे कहने लगा जपता हो जैसे मंत्र कोई। सारे अल्लाह के बंदे हैं तुम व्यर्थ विवाद बढ़ाते हो, क्या अंतर बोलो पड़ जाएगा यदि मुसलमान बन जाते हो। जोरावर तब बोला हंसकर हम सारी बात समझते हैं, पर राजनीति की शतरंज है हम शय और मात समझते हैं। यदि अल्लाह एक मानते हो तो उसका दीन ईमान क्या, यदि अल्लाह एक मानते हो तो हिंदू मुसलमान क्या। जिसके दिल में अल्लाह बैठा वह तो अल्लाह का बंदा है, मैं हिंदू हूँ तू मुसलमान यह सब स्वार्थ का धंधा है। तू तेरी इबादत कर बैठा हमको तो सिमरन करने दे, केवल ओंकार एक है हमको प्राणों में भरने दे। क्या हमें भय दिखलाते हो, हम नहीं मौत से डरते हैं, शूर सदा आगे बढ़कर बाहों में काल को भरते हैं। जन्नत जैसे ये ठाट बाट नौकर चाकर लश्कर माया, न कोई साथ लेकर जाता न अब तक को साथ कोई लाया। एक पंथ से आए सब और एक जगह ही जाना है, सच पूछो यह जग मुझको तो लगता मुसाफिर खाना है। आज आए कल चलना अब फिर किससे किसको डरना है, काल आने पर तो राजा हो या रंग सभी को मरना है। जब अहंकार को ठेस लगी शासक ने मन में ठान लिया, ये मेरे लिए चुनौती है यदि इन्हें क्षमा का दान दिया। सहसा क्रोधित हो कड़क उठा अरे तुम उम्र में छोटे हो, लेकिन माफी के योग्य नहीं बाहर भीतर से खोटे हो। मैंने सोचा समझा दूं पर नागों की प्रीत नहीं होती, जो कभी नहीं बन सकते हैं पत्थर घिसकर हीरे मोती।
1: बहुत अच्छे।
0: फतेह सिंह ने ओज युक्त वाणी में तब हुंकार भरी, खां साहब सुनो हम आज आपको बातें कहते हैं खरी खरी, नहीं होता कोई धर्म बुरा कोई मजहब छोटा और बड़ा, तुम जैसे ठेकेदारों का पर पहरा है उन पर बहुत बड़ा। हाँ इसलिए तो मानव ही मानव से कितना डरता है और आने वाली पीढ़ी की नस नस में नफरत भरता है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए मृत्यु दंड तय है, पर सच कहने में हमें जरा सा नहीं काल से भी भय है। जब तेरी पीढ़ी ही तेरा यह निर्णय गलत बताएगी, तब तेरी रूह कयामत तक नहीं बैठ चैन से पाएगी। तू जिन दीवारों के भीतर चिनवाता हमें ये बोलेंगी, उस आने वाले युग में तब काली करतूतें खोलेंगी। जिस दिन मानव के भीतर का मानव ज्ञानी हो जाएगा, अपना करके तब मनुष्य धर्म वह सब धर्मों को त्यागेगा। विश्वास हमें है दृढ़ इतना बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मानव बस मानव ही होगा यह नया सवेरा आएगा, यह नया सवेरा आएगा।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया किरण जी। अक्सर जैसी एक धारणा बनती है कि अगर महिला कोई कविता लिखेगी तो वो रुमानियत की तरफ होगी या वो कोई ममत्व की तरफ होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत बात कि आपने ऐतिहासिक कैरेक्टर पर उस तरह से कविता लिखी और बहुत बढ़िया तरीके से उसको रखा। मुझे ध्यान आया कभी मैंने लिखा कि दुनिया में केवल अपना गम देखा है, दुनिया में केवल अपना गम देखा है, यानी तुमने दुनिया को कम देखा है। और कांप उठी हैं बुनियादें अब महलों की, औरत के हाथों में परचम देखा है। तो अगर इस तरह से कविताएं आनी शुरू होंगी तो बहुत खूबसूरत बात है।
0: एक कविता प्रस्तुत है। सिर पर मुकुट सुशोभित हिम का शोभा नहीं निखारता, आंखों में गंगा का पानी सागर चरण पकड़ता।

0: भारता। कृष्णा कावेरी यमुना के जल की नई मुस्कान है, सब दुनिया से प्यारा न्यारा मेरा हिंदुस्तान है। धरती पर है आया उतर जो स्वर्ग यहाँ कश्मीर है, सुजला सुफला सच श्यामला ये इसकी तस्वीर है। नित्य नए सुमनों से खिलती है हिमगिरी की वादियाँ, करती हैं गान निरंतर झरनों वाली घाटियाँ। शीतल मंद सुगंध हवा के यहाँ गूंजते गान है, सब दुनिया से प्यारा न्यारा मेरा हिंदुस्तान है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
0: पांच पानी जहाँ एक हुए हैं वह अपना पंजाब है, रंग बिरंगे फूलों की बगिया में खिलता गुलाब है। गुरु गोविंद रणजीत हरी सिंह नलवा की हुंकार है, एक हाथ में गुरु ग्रंथ और दूजे में तलवार है। फांसी के फंदों को चूमकर हंसते वीर जवान है, सब दुनिया से न्यारा प्यारा मेरा हिंदुस्तान है।
1: बहुत अच्छा।
0: यह रेतीली माटी कहती गौरव अपने आप का, घास खा लिया मस्तक लेकिन झुका नहीं प्रताप का। कंपा दिया था शत्रु दल को उस सांगा की शमशीर ने, 80 घावों से श्रृंगार किया उस रणधीर ने। वीर शिरोमणि सुबटों का रमणी थल राजस्थान है, सब दुनिया से न्यारा प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। झांसी के मैदान में देखो पौरुष है हुंकार था, लिए तांतिया तेग हाथ में दुश्मन को ललकार था। मर्द बनी है लक्ष्मी बाई दुर्गा की अवतार है, आभूषण की जगह हाथ हथियारों की झंकार है। आजादी के मतवालों का तन तन नया वितान है, सब दुनिया से न्यारा प्यारा मेरा हिंदुस्तान है।
1: बहुत अच्छे।
0: गूंज रही है कहीं बांसुरी गीता कहीं पुकारती, शुभ्र वसन वीणा कर में मधु स्वर में गाती भारती। बजते हैं मृदंग कहीं पर रसियों की भरमार है, प्रेमाकुल गोपियों के पढ़ने से भरी पुकार है। मुक्त हंस दे रही प्रकृति वैभव का वरदान है, सब दुनिया से न्यारा प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। सब दुनिया से न्यारा प्यारा मेरा हिंदुस्तान है।
1: बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया कविता किरण जी आपने रखी, और हिंदुस्तान की खूबसूरती पर आपने जो कविता रखी, मुझे याद आया एक बाल कविता मैंने कभी लिखी थी कि मैंने उस दिन पूछ लिया था सर से एक सवाल, सारे जहां से अच्छा ही क्यों कहते थे इकबाल। सर ने अपना चश्मा रखा मुझको पास बुलाया, और पास बिठाकर मुझको अपने फिर ऐसे समझाया, सब दुनिया अच्छी है सबको अपने मुल्क हैं प्यारे, फिर भी कुछ ऐसा है जो है केवल पास हमारे। इतने सारे मजहब हैं इतने सारे त्यौहार, पर्वत नदियाँ रेत समंदर झरने और पठार, और इतने सारे मौसम हैं इतनी सारी आशाएं, और कौन सा मुल्क है जिसमें हों इतनी भाषाएं। सब कुछ इतना सारा है पर फिर भी हैं हम एक, सबसे पहले भारतवासी है हम में प्रत्येक। तो वही बात आपने रखी कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ की खासियत यहाँ का विविधताओं में एकता है। बहुत बहुत बढ़िया। मैं अब जिस शख्स को यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ वो पेशे से विधि के व्याख्याता रहे, और उसके बाद गीतों के क्षेत्र में अपने स्वर से अपनी आवाज़ से वो एक अलग पहचान उन्होंने बनाई, उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं उनको आवाज़ दूँ। हमारे बीच श्रीगंगानगर से श्री चंद्र भानु त्यागी उपस्थित हैं, और उन्हीं की पंक्तियाँ हैं कि मैं तो कवि हूँ, कविता का एहसास लिए फिरता हूँ, और कविता से ही परिवर्तन की आस लिए फिरता हूं। तो ऐसी एक आवाज श्री चंद्र भानु त्यागी श्री गंगानगर से।
2: धन्यवाद संदेश को, जिस कविता का परिचय दिया मैं उसी कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के।

इतिहास लिए फिरता हूँ, मैं तो कवि हूँ कविता का। और अंतिम छंद है, कवि

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे प्रोफेसर चंद्र भानु त्यागी। मैं तो कवि हूँ, कविता का एहसास लिए फिरता हूँ। और पूरी कविता में जो अगर सार तत्व निकाला जाए, जो मेरी नज़र से, वो ये कि अगर अपनी पीड़ा है तो वो आंसुओं में व्यक्त होती है, और अगर दूसरे की पीड़ा है तो वो कविता में व्यक्त होती है। तो ये बात, और मुझे एक दार्शनिक की बात याद आई कि कवि कितना भोला होता है, सबके लिए स्वयं रोता है, कि अगर दुनिया का सारा पानी, नदी, नाले, झील, समंदर सबका एक तरफ हो और आदमी की आंखों से बहा हुआ पानी एक तरफ हो, तो उसकी मात्रा ज़्यादा होगी बजाय के झरने के, झील के, समंदर के। और उस पानी में बहुत बड़ा योगदान इस हिंदुस्तान के नहीं, पूरी की पूरी दुनिया के कवियों का भी होगा कि उन्होंने न जाने कितनी परपीड़ा को महसूस किया और उसे व्यक्त किया। बहुत खूबसूरत कविता। और अब उस चरण में है जहाँ हम बहुत सम्मान के साथ आवाज़ दे सकते हैं डॉक्टर मंगत बादल को, वो नाम जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा या पंजाबी भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है, वहाँ डॉक्टर मंगत बादल की उपस्थिति एक तरह से अनिवार्य मानी जाती है, निबंध के क्षेत्र में भी, व्यंग्य के क्षेत्र में भी। और न जाने कितने सम्मान डॉक्टर मंगत बादल के पास आकर के सम्मानित हुए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज़ दूंगा डॉक्टर मंगत बादल को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें।
1: कवि कविता के साथ साथ जो कहता है वो समाज का दुख दर्द तो होता ही है, लेकिन वो अपनी चालाकियों और उन बातों की तरफ भी इशारा कर देता है जो आजकल चल रहा है, पढ़े लिखे लोगों में समझ लो, चाहे साहित्य की दुनिया में। और तब मुझे याद आते हैं कबीर, उन्हीं का नाम लेकर के ये कविता शुरू है कि तुम तो सच कह गए कबीरा, तुम तो सच कह गए कबीरा, पर हम दुनियादार, तुम तो सच कह गए कबीरा
0: पर हम दुनियादार
1: कलम हाथ में पकड़ी लेकिन रह न सके खुददार। कलम हाथ में पकड़ी लेकिन रह न सके खुददार।
0: बहुत अच्छे।
1: छल स्वार्थ की बातें पढ़ ली, छल स्वार्थ की बातें पढ़ ली, ढाई आखर छोड़े के छल स्वार्थ की बातें पढ़ ली, ढाई आखर छोड़े, फिर भी पंडित बन दौड़ाए पुरस्कार के घोड़े, के फिर भी पंडित बन दौड़ाए
0: पुरस्कार
1: के घोड़े, आंच सांच की कभी न झेली पकड़ झूठ का दामन, आंच सांच की कभी न झेली पकड़ झूठ का दामन, रहे बेचते आजीवन हम खुद को बारंबार, रहे बेचते आजीवन हम
0: खुद को
1: बारंबार, कलम हाथ में पकड़ी लेकिन रह न सके खुददार।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
1: तेरी चादर ओढ़ी थी, तेरी चादर ओढ़ी थी फिर भी मैली कर डाली, तेरी चादर ओढ़ी थी फिर भी मैली कर डाली, बैठे रहे नदी के तट पर लेकर गागर खाली, बैठे रहे नदी के तट पर लेकर गागर खाली, कच्चे सूत का ताना बाना हम तो साध न पाए, कच्चे सूत का ताना बाना हम तो साध न पाए, ईड़ा पिंगला और सुख मन के टूटे सारे तार, के ईड़ा पिंगला और सुख मन के टूटे सारे तार, कलम हाथ में पकड़ी लेकिन रह न सके।
0: बहुत अच्छे।
1: अंतिम बंद है इसका कि बड़े बड़ा भरोसा था खुद पर कि हम जिस राह जाएंगे, बड़ा भरोसा था खुद पर कि हम जिस राह जाएंगे, पीछे चलकर लोग हमारे साथ चले आएंगे, पीछे चलकर लोग हमारे साथ चले आएंगे, स्वप्न भंग हो गया आज हम बैठे हैं एकाकी, स्वप्न भंग हो गया आज हम बैठे हैं एकाकी, जन्मे जाना था कवि को, जन्मे जाना था कवि को पर चले गए दरबार, पर जन्मे जाना था कवि को पर चले गए दरबार, तुम तो सच कह गए कबीरा,

0: पर हम दुनियादार कलम हाथ में पकड़ी लेकिन रह न सके।
1: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मंगल।
0: एक गीत है,
1: बिल्कुल स्वागत,
0: जो सांसारिक संबंधों का और ये संबंध कितने सच्चे झूठे हैं हम सब जानते हैं, इसी को लेकर है। कौन किसी का साथी जग में,

0: बहुत अच्छे
1: से, मौन रात यहाँ भर जाती है, पीड़ा हर एक श्वास में, पतझड़ क्योंकि खेला करती हरे भरे मधुमास में,
0: बहुत बढ़िया।
1: घोर निराशा पथ कांटों का

0: गीत है, पल दो पल के प्यार की बातें, पल दो पल के प्यार की बातें, साधन दिल बहलाव का, मानो जैसे मिलन हो गया नदिया के संग नाव
1: बहुत
0: का।
1: बढ़िया।
0: पल दो पल के प्रेम की बातें, साधन दिल

0: के पंथी हम सब लिए बसेरा छांव में।
1: बहुत बढ़िया।
0: भटक भटक कर बिखर जाएगा सांसों का इतिहास भी, भटक भटक कर बिखर जाएगा सांसों का इतिहास भी, यही अटल सत्य है जिससे दीप्तिमान अतीत है, यही अटल सत्य है जिससे दीप्तिमान अतीत है, कि जिसकी चाह सवेरा करता, जिसकी चाह सवेरा करता, संध्या का

0: संसार की।
1: बहुत बढ़िया,
0: कौन करे विश्वास किसी का, कौन करे विश्वास किसी का, काल का ये परिहास है, आदमी बस आदमी से इसीलिए भयभीत है।

0: गीत है अंतिम बंद है इसका।
1: स्वागत।
0: कि श्वास चक्र से ही बनता है जीवन का इतिहास भी, दुख है लेकिन जीवन के संग जुड़ा हुआ उल्लास भी। श्वास चक्र से ही बनता है जीवन का इतिहास भी, दुख है लेकिन जीवन के संग जुड़ा हुआ उल्लास भी। दोहराना है बार बार अपनी कोई भूल को, अंत समर्पण करना पड़ता है माटी में फूल को, क्योंकि हम चलने के आदि चलने को मजबूर हैं, खोकर

0: अपनी अपनी मंजिल सबकी, बस दो दिन की प्रीत
1: बहुत बढ़िया,
0: है।
1: बहुत ही बढ़िया।
0: और अब मेरा निवेदन है संदेश जी से कि इतनी देर वो हमें चलाते रहे, हमारा निवेदन है कि वे भी अपना कोई मधुर सा गीत प्रस्तुत करें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश सर। मैं दो तीन मिनट में, चार मिनट में एक गज़ल के दो चार शेर तहत में और फिर एक गीत के। आंसू अगर आँखों से संभाला न जाएगा, आंसू अगर आँखों से संभाला न जाएगा, फिर ख्वाब कोई उम्र भर पाला न जाएगा।
0: वाह वाह वाह।
1: आंसू अगर आँखों से संभाला न जाएगा, फिर ख्वाब कोई उम्र भर पाला न जाएगा, मुमकिन है इम्तिहान में वो बेवफा मिले।
0: वाह।
1: मुमकिन है इम्तिहान में वो बेवफा मिले, मुझसे वो इम्तिहान में डाला न जाएगा।
0: वाह वाह।
1: मुझसे वो इम्तिहान में डाला न जाएगा। और मंजिल भले ही दूर हो, मंजिल भले ही दूर हो, उससे मिले बगैर। मंजिल भले ही दूर हो, उससे मिले बगैर, जिद पे अड़ा है पांव का छाला न जाएगा।
0: वाह वाह।
1: जिद पे अड़ा है पांव का छाला न जाएगा। और उसने जला दिए हैं शहर पे शहर मगर, उसने जला दिए हैं शहर के शहर मगर, इस तीरगी से खुद को निकाला न जाएगा।
0: वाह वाह वाह।
1: इस तीरगी से खुद को निकाला न जाएगा। और तब तक तो सियासत भी तुम्हें कुछ नहीं देगी, तब तक तो सियासत भी तुम्हें कुछ नहीं देगी, जब तक रगों में खून उबाला न जाएगा।
0: वाह।
1: जब तक रगों में खून उबाला न जाएगा। और बुझते हुए दिए ने ये हंसते हुए कहा,
0: बुझते
1: हुए दिए ने ये हंसते हुए कहा, तुम आंधियों से जग का उजाला न जाएगा।
0: वाह वाह।
1: तुम आंधियों से जग का उजाला न जाएगा। और एक गीत के दो बंद आपके सामने रख देता हूं।
0: स्वागत है।
1: कि आवरण से कोई संत कब हो सका, आवरण से कोई संत कब हो सका,

0: इंसान था। गैर से तोड़ना फिर भी आसान था, खुद से वादा किया तो निभाना पड़ा। आवरण से कोई संत कब हो सका। और एक घटना सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की, वो चले गए और फिर लौट के आए और पत्नी से आमना सामना हुआ, उस घटना पे मैंने एक बंद लिखा सर कि आवरण से कोई संत कब हो सका। हो के जग से विकल, घर से बाहर निकल, प्रश्न पूछा किए फूल से खार से। हो के जग से विकल, घर से बाहर निकल, प्रश्न पूछा किए फूल से खार से। जीत भीतर के छल, ले सवालों के हल, लौटे पत्नी ने पूछा बड़े प्यार से। जिसकी खातिर गए क्या वो जग में नहीं, जिसकी खातिर गए क्या वो घर में नहीं। बुद्ध को मौन हो मुस्कुराना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। और अंतिम बंद
1: स्वागत है
0: कि बिन किसी बात के, बिन मुलाकात के, प्रेम में जिसके मीरा दीवानी हुई। बिन किसी बात के, बिन मुलाकात के, प्रेम में जिसके मीरा दीवानी हुई। और सूर को दिख गए, व्यास भी लिख गए, जिसकी हर एक अदा फिर कहानी हुई। और जिसकी मुस्कान ही धर्म का मर्म है।

0: है। कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा आवरण से, कोई संत कब हो सका। अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ा, गैर से तोड़ना फिर भी आसान था। खुद से वादा किया तो निभाना पड़ा, आवरण से कोई संत कब हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस काव्य गोष्ठी में जो प्रतिभागी कवि थे, मैं एक बार पुनः उनका परिचय करा दूं। आप रायसिंह नगर से डॉक्टर मंगत बादल, रायसिंह नगर से ही श्रीमती किरण बादल, श्री गंगानगर से डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु और श्री चंद्रभान त्यागी, और मैं संदेश त्यागी इस काव्य गोष्ठी का संचालक के रूप में। आपने इस गोष्ठी को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप काव्य गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी थे किरण बादल, मंगत बादल, संदेश त्यागी, चंद्रभानु त्यागी और कृष्ण कुमार आशु। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर। सबसे पहले सुनते हैं खामोशी फिल्म का गीत लता की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए अब सुनिए तवायफ फिल्म का गीत आवाज, महेंद्र कपूर की है।

0: सुहाना सफर कार्यक्रम के आखिर में सुनिए निकाह फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: अभी अलविदा मत कहो।

निकाह फिल्म के इस गीत के साथ ही सुहाना सफर कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त को दें इजाजत, नमस्कार, और आप सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ और फिल्मी गाने। श्रोताओं माफ कीजिएगा, हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

श्रोताओं, शहीद फिल्म का गाना भी आपने सुना, लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। खानदान फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म जिंदगी से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीत हसरत जयपुरी का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमानत फिल्म का गाना भी आपने सुना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गाना समाप्त कीजिए कालीचरण फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में, गीत शैलेंद्र का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना अब आप सुनिए। अभिनेत्री फिल्म से ये गाना हमने लिया है, लता की आवाज़ है, गीत मजरू का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं आप ये गाने सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, कार्यक्रम सैनिकों के लिए में।

लीजिए आज का पंची फिल्म का गाना आप आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। हंसल जयपुरी के गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

ये आवाज़ थी मुकेश की, फिल्म का नाम था आवारा बादल, गीत जानिसार अख्तर का और संगीत उषा खन्ना का। कार्यक्रम में आगे सुनिए हलाकू फिल्म से ये गाना जिसे लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है, गीत शैलेंद्र ने लिखा और संगीत शंकर जैक्सन ने दिया।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में ठीक 12 बजे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी सूरतगढ़ के करंचड़ी चैनल से मैं आइए सुरों सरगम खबरों और खूबसूरत पेशकशों से सजे आज के प्रसारण सफर पर एक नज़र डालती हैं। दोपहर 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे, जिसमें मन भावन गीत और बातों के साथ 12:30 पर सुगम संगीत सुनिए मधुर धुनों के साथ। 12:50 पर खेत खलिहान में आज चर्चा होगी संतुलित आहार कैसे बनाएं। ये जानकारी आपको देंगे सुनील वर्मा। ठीक 1:00 प्रादेशिक समाचारों से रूबरू जयपुर अजमेर केंद्र से 1:05 पर महिला जगत में आप उर्मिला सेठी के साथ सुनेंगे कश्मीर की सैर, पर्यावरण संरक्षण की बात और सेहत से जुड़ी उपयोगी जानकारी। दो 2:30 पर फिल्म संगीत में सुनिए सदाबहार नगमे। 3:00 दिल्ली से उर्दू सर्विस की पेशकश आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 5:00 युवाणी लेकर आएगा कर्तव्य निष्ठा, फरमाइशी गीत और आज के इतिहास के पन्ने। 7:00 चौपाल में होंगे बाजार भाव, मौसम की जानकारी और श्रोताओं के पत्र। रात 8:00 एक ही फिल्म से यादगार गीतों की महफिल। 8:30 पर खेल जगत की हलचल लेकर आएगा स्पोर्ट्स कैन। रात 9:30 पर चर्चा का विषय में सुनिए समसामयिकी मुद्दों पर विशेष प्रस्तुति। रात 10:00 आपकी पसंद का प्यारा कार्यक्रम हेलो मन भावन। आज का हेलो मन भावन लेकर आएंगी लक्ष्मी। तो बस जुड़े रहिए आकाशवाणी सूरतगढ़ के साथ।

हेलो वन भवन में निर्देशक व संयोजक रहेंगे नवीन सिसोदिया। 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश, 11:10 पर सभा समाप्ति उद्घोषणा।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

आप सभी श्रोताओं का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के उस असली एक्शन हीरो को जिसने पर्दे के पीछे रहकर हीरोज को उड़ना लड़ना सिखाया। जी हाँ, आज बात होगी महान स्टंट और एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की।

0: अजय देवगन की फूल और कांटे जैसी आइकॉनिक बाइक एंट्री को डिजाइन किया था वीरू जी ने। श्रोताओ, वीरू देवगन जी अमृतसर से मुंबई हीरो बनने आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन डायरेक्टर बना दिया। फुटपाथ पर रातें गुजारने से लेकर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के लिए एक्शन डिजाइन करने तक उनका सफ़र प्रेरणादायक है। वे केवल स्टंट नहीं बल्कि फाइट में भी इमोशन डालते थे। चलिए सुनते हैं फिल्म दिलवाले का ये सुपरहिट गाना।
1: चल तुम घर में आने के साथ बगीचे में गाना गाएंगे।
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
1: बेबी कम ऑन,

श्रोताओ, वीरू जी का मिस्टर इंडिया का स्टंट सीक्वेंस और सेंसा में अमिताभ बच्चन का लोहे के हाथ वाला एक्शन आज भी यादगार है। उन्होंने ही हिंदी सिनेमा में सेफ्टी गियर्स और केबल वायर स्टंट्स की शुरुआत की थी। आइए सुनते हैं सेंसा का ये कलट गाना।

श्रोताओं, तो आज 27 मई को हम सब महान एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि अमृतसर से जब वे मुंबई आए तो उनका असली नाम वीरेंद्र हरजीदास देवगन था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और उनके दोस्तों ने उन्हें प्यार से नाम दिया वीरू जी। वीरू जी केवल पर्दे पर ही हीरो नहीं बनते थे, बल्कि वे असल जिंदगी में भी एक सच्चे लीडर थे। उस दौर में जब फिल्मों में स्टंटमैन की जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती थी, तो वीरू जी ने एक बेहद ऐतिहासिक शुरुआत की। वे किसी भी स्टंटमैन से खतरनाक स्टंट करवाने से पहले उसका पूरा बीमा करवाते थे। उनका मानना था कि पर्दे का एक्शन किसी के घर का दिया नहीं बुझना चाहिए। उन्होंने स्टंटमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर उनके हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए

0: कई कड़े नियम बनवाए। यही वजह है कि पूरी इंडस्ट्री उन्हें आज भी भगवान की तरह पूजती है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि वीरू जी भले ही कैमरे के पीछे रहे, लेकिन हिंदी सिनेमा को उन्होंने जो ऊंचाइयां दी वो हमेशा अमर रहेगी। बतौर निर्देशक उनकी आखिरी और बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम। तो आइए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए उन्हीं की निर्देशित फिल्म का जोश से भरा और उनका आखिरी सबसे बड़ा हिट गाना आपको सुनवाते हैं।
1: Oh, yeah!

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत में कुछ चंद गज़लें।

मेहदी हसन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुनील वर्मा के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय है संतुलित आहार कैसे बनाएं।

किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आपां खेतीपाती के सागे सागे पशुपालन भी करा हाँ, और पशुपालन जो है खेती से जुड़ेड़ो ही एक धंधो है। इसमें भी किसान भाई जी का है उत्पादन छूँ, पशुओं का उत्पादन छूँ, आपां लाभ कमावा यहाँ। और पशुओं के देखभाल में आपां देखा कि ज़्यादा जी को खर्चो हुआ वो आहार के ऊपर ही हुआ, तो आहार जो है वो आपां अच्छी तरह जानकारी छूँ, और पूरा जितो पशुओं ने जरूरत है वही अपन देना चाहिए, और संतुलित आहार पशुओं ने अपन देवा तो भी शू क्या पशुओं ने फायदो ज़्यादा हुए, मंगो स्वास्थ्य जी को है वो अच्छो रेवे और उत्पादन भी जो है बढ़िया हुए। तो यही करके आहार जो आप हमेशा माने संतुलित अपन आहार देना चाहिए। संतुलित आहार को मतलब है कि जिका मैं सह भात का पोषक तत्व आहार में होना चाहिए, भी शू पशुओं ने अच्छी तो ताकत मिले है, स्वास्थ्य बढ़िया रेवे, रोग कम लागे, और जिकी गुणवत्ता हुआ उत्पादन की भावी अच्छी हुए। तो इन करके आज आपां पहली बात करांगा कि जिको आहार है वो संतुलित आहार बनाने खातर आपने के बिंगमा चीज़ें चाहिए। तो देखो चोकर जिकी है बा 35 किलो आपने लेनी है, वो आपां जिया 100 किलो आहार बनाना हो तो बिंग खातर आपां 35 किलो चोकर ले लिया, और रिंगमा सरसों की या सोयाबीन की खड़ जिकी है वह लगभग 25 किलो, और पिसेड़ा कोई जौ है या मक्की है या कोई दाणो जो को पिछड़ो है वो लगभग अपन ने 37 किलो लेना है, और इंगमा जी का खनिज लवण है वह अपन बाजार से मिल जाए तो वह लगभग 2 किलो के लगभग अपन ने खनिज लवण हो, और 1 किलो जो को इंगमा अपना होना चाहिए लूण। तो भी शू क्या कि वो अपन 100 किलो जो को आहार है वो अपन तैयार कर सकें, और कम ज़्यादा करना है तो भी हिसाब से आप क्या कि मात्रा जी की अपना कम ज़्यादा कर लें, तो वो जो को आहार है वो संतुलित आहार है, और ये शू क्या कि पशुओं ने अपना अच्छी तरह आहार अपन देशा तो भी शू पशु जी का एकदम स्वस्थ रहे सी। और इन सागे सागे पानी जो है वो पशुओं ने दिन में कई बार अपन साफ सुथरो एकदम पानी स्वच्छ पानी जो है पशुओं ने पियानो चाहिए, और दूध देने वाली भैंस है तो वह एक दिन में लगभग 60-80 लीटर पानी की बिना जरूरत पड़े। और आम दिन में खास करके आप देखा कि किसान भाई गर्मी जो की है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पशुओं ने अपन दिन में 5-6 बारी जो है वो पानी अपना साफ सुथरो स्वच्छ पानी अपन ने पियानो चाहिए। और जिका पशु बाड़े में अपना कई किसान भाई जिका खुला पशु रखा बाड़े गमा तो बेटा जी की पानी की कोई होदी है या खेड़ी बनाई है तो वह एकदम साफ सुथरी हो, बिंगमा कचरो नहीं होना चाहिए, और बिंगमा पानी जो है आप टेमो टेम पानी जो है साफ पानी और एकदम ठंडो पानी हो स्वच्छ पानी हो वो अपन भर देना चाहिए, तो जिसमें पशुओं जी तीस लागे बी पानी पी ले। और खेड़ी के माँ किसान भाई आप एक बात और ध्यान रखा कि टेमो टेम आप जो चुनो हो नी कली जी का ना आप बोलना तो बस कली भी कर देनी चाहिए, बीच में भी पशुओं ने फायदा हो, एक तो देखो साफ सुथरी रेवे और दूसरो कली जी की है चुने के माँ भी कैल्शियम की मात्रा खूब हो तो बीच में भी पशुओं ने फायदा हो, पशु पानी जी का है अच्छी तरह पूरा जी भर के पानी पी ले। किसान भाइयों, अब आप बात करा कि वो संतुलित आहार जो को आप बना के देवा तो इसमें के फायदा पशुओं ने उसका है, तो देखो पहली तो आप बात करा आहार की, तो आहार जी का है कई भांत का, एक तो जी का आप संतुलित आहार बोला, एक आहार हुआ जिसे जिसमें कह कि पशु पेट भर लिया पर बीच में कह कि पूरा पोषक तत्व तो बने मिला को नहीं, तो इन्हें आप केस कहाँ कि जिको जीवन निर्वाह आहार या राशन आप इन्हें कह लिया। और इसमें अलावा उत्पादन आहार हुआ तो जियाँ कई पशुओं से जियाँ आप उत्पादन लेवा जियाँ दूध है, ऊन है, अंडा है, तो अन्य अपन के है अलग छू अपन आहार देना चाहिए, तो भी छू के उत्पादन जी को है ज़्यादा होवे और बिंग गुणवत्ता भी जी की अच्छी रहे। इंगे सागे सागे जिका गाभिन पशु हुए तो बने भी जी को आहार देवा बिना आप प्रजनन आहार बोला तो बिंग भी अच्छी तरह जानकारी लेगी और वो आहार बने देना चाहिए। तो आप बात करें संतुलित आहार में जिका पोषक तत्व हुए तो पहली आप बात कर सें कार्बोहाइड्रेट जिको तत्व है बिंगी, तो कार्बोहाइड्रेट है वो देखो आप जिका अनाज का जिका आहार है या फिर चारों आप जिको पशुअन देवा तो बिंग में का कार्बोहाइड्रेट हुए, इसमें पशुअन के देखो ताकत तो मिले ही मिले, इंगे सागे सागे पशुओं में जिको कोई चिकनास है या फिर प्रोटीन है तो बिंगा पचाण में भी खूब आने मदद हुए, और सागे सागे आपा दूध है तो दूध का माँ जी की आपा बोलना कई बार आपा देखा नहीं आपा दूध या ने दूध देवार वो के दे अभी फैट थर तो कम आई आज भाव कम लाग सी, तो बाद जी की फैट हुआ इन आपा वसा बोलना तो इनकी मात्रा भी कम हो जाए फिर गुणवत्ता कम हो तो बीच भाव कम हो जाए और फिर किसान भाई अपना फायदा जो कम हो सी, तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है तो बीच में क्या कि अपना दूध की जी की गुणवत्ता अच्छी हुए और भाव जी का अपना पूरा मिलना चाहिए अपन। अगलो जो को पोषक तत्व तो जिका की आप बात करा वसा जिका ने आप चिकनास भी बोला चिकनाई बोल दें या चर्बी बोल दें, तो इंग माँ कार्बोहाइड्रेट जिका की अभी आप बात करी भी शू 2.5 गुना ज़्यादा बतावे है कि जिका डाक दर्जी वह बतावे 2.5 गुना ज़्यादा इंग माँ ताकत हो तो अभी पशुओं का तर जरूरी है, तो आज यहाँ आप कोई सरसों की खड़ी देवा या दूसरे कोई खड़ी देवा आप खड़ जिकी देवा या दाणो देवा तो भी शू भी आपने पशुओं में आहार जिको देवा बिंग मात्रा में पूरी हुए, और इंग सागे सागे पशुओं का जिका अंग हुए

0: तो वन भी बिल्कुल स्वस्थ रखे और सागे शरीर को तापमान है वो भी नियंत्रण रखे और पाचन क्षमता है बा तो वसासु बहुत ही अच्छी हो जाए, तो पशुओं जी को आहार देवा बहुत अच्छी तरह पच जाए वसासु। किसान भाइयों के सागे सागे आप बात करा प्रोटीन की, देखो आप चाहे मिनक है और चाहे पशु है या कोई भी जीव जंतु जी का है तो सगला ने प्रोटीन की जरूरत हो। प्रोटीन चूंकि है कि अपना जिका कोशिका और उत्तक हो नहीं या आप यहाँ कह दिया कि जी की मांसपेशियाँ है और कई बार आप अपन डाक दर्जे अपन कह दिया नहीं कि थारा सेल कम हो गया क्या, तो बे सेल जिका है नहीं अपने आम भाषा में आप कह दिया कि सेल जिका है, बे सेल भी प्रोटीन छू जिकी है कि बांगी जिकी बनता रहे बा अच्छी रहे। और आए जिका हार है प्रोटीन जिका अपना जिया दाला होगी बांगा छिलका हो गया या अपन दाल वाली फसलों का जिया चारों आप देवा या जिया तेल वाली फसलों की जिकी खड़ है तो बीसों प्रोटीन जो है पशुओं मिले। और जिका छोटा बछड़िया है या छोटा जीव है बंग जिकी वृद्धि है शारीरिक वृद्धि है तो बंग में भी वो सहायता करे और दूध को जिको उत्पादन है और पशुओं ने बीमारियां से बचावे तो बी खातर प्रोटीन जो है बहुत ही जरूरी है। तो वो संतुलित आहार में किसान भाइयों होना बहुत ही जरूरी है। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखा कि पशुओं जिको भी आहार आप देवा तो भी मैं प्रोटीन वाला जिका चाहे वह सूखो चारो है चाहे हरियो चारो है या फिर दाणो देवा कोई बंटो देवा तो भी मैं प्रोटीन जिको है वह जरूर होना चाहिए। किसान भाई अब आप बात करांगा खनिज लवण की, खनिज लवणी देखो पशुओं खातर बहुत ही जरूरी है। तो खनिज लवण में देखा तो 15 भांत का जिका है खनिज तत्वों की पशुओं ने मुख्य रूप से आवश्यकता होवे। अब मैं कई तो ऐसा जिका की ज़्यादा जरूरत होवे और कई जिका है बांगी कम जरूरत होवे। तो आप बात करा ज़्यादा जरूरत वाला है जियाँ कैल्शियम है पोटासियम है फास्फोरस है सोडियम है क्लोरीन है मैग्नीशियम है सल्फर है तो ऐ जिका खनिज तत्व है आंगी ज़्यादा जरूरत पड़े। और जिका कम जरूरत वाला है तो अने आपा अपनी भाषा में कह दें कि गौण खनिज लवण भी आप बोल दें अने तो जी आयरन हो गयो कॉपर हो गयो मैगनीज हो गयो जिंक हो गयो आयोडीन हो गयो ऐ जिका ए कम जरूरत वाला है पर ए सगला ही जिका है पशुओं खातर बहुत ही जरूरी है। आंगी कमी शू की है कि जिकी शरीर की वृद्धि है बात तो कम हुए ही हुए है और सागे उत्पादन में बहुत फर्क पड़े और सागे सागे पशुओं की जिकी हड्डी है और दांत जिका हुए तो बांगी जिकी अच्छी बनावट है बी खातर खनिज तत्व है वे बहुत ही जरूरी है। और सागे सागे आपने जिके खून वाला जिका सेल है जिका शू खून बने तो बाँ खातरी बहुत जरूरी है। तो इन करके खनिज तत्वों की जिकी मात्रा है वह पूरी होनी चाहिए और खनिज तत्व किसान भाइयों आपने बाजार से आपने मिल जाए और आंग ऊपर कोई घणों खर्चो भी कोनी आवे तो आप बाजार से लेके भी आप पशुआना ने देश का तो ईशू दूध की जिकी मात्रा है और गुणवत्ता है बात तो अच्छी हो ही हुए और सागे सागे पशुओं है जिकी बीमारियाँ लागे कई भांत की जिकी बीमारियाँ हैं बाँ से पशुओं को छुटकारो मिल जाए। और नहीं तो आप देखा कि बीमारी ज़्यादा हो जाए तो बिना इलाज कराने पर भी अपनों खर्चो ज़्यादा हो जाए तो बीस तो अच्छा है कि आप बाजार से खनिज लवण ले गए और रोज की जितनी जरूरत है बिता पशुओं ने आपने देना चाहिए। इनके सागे सागे किसान भाइयों बात करें विटामिन की तो विटामिन पोषक तत्व है वो भी संतुलित आहार को एक हिस्सों है और यह भी बहुत जरूरी है। तो ईशू पशुओं का जिका अंग है अंग वृद्धि होवे और सागे सागे पशुओं का माँ जहाँ आप कई बार देखा कि आँखें से पानी आने लग जाए पशुओं ने खांसी हो जाए निमोनियो हो जाए या फिर कई अंग देखा कि आप जिका बंगो अच्छी तरह विकास को नहीं होवे तो ऐ इसी जिकी बीमारियां हैं आँचू लड़ने की जिकी क्षमता है वह भांत भांत का जिका विटामिन होवे बाँचू ही आवे। और विटामिन भी किसान भाइयों कई भांत का होवे तो आए सगला जिका विटामिन है आंगो भी आप संतुलित आहार में जरूर ध्यान रखा। और इंगा सागे सागे पानी की जी आप बात करी तो पानी आप टेमो टेम आपने देना चाहिए। तो किसान भाइयों ऐ सगला पोषक तत्व उचित मात्रा में, उचित मात्रा को मतलब है कि आप पशुओं ने जितनी जरूरत हो दिन की बितनी मात्रा में हो तो वो संतुलित आहार आपने देना चाहिए। तो वो जो भोजन है वो पाचक भी होवे और अच्छी तरह पौष्टिक भी होवे और इंगा सागे सागे बीमारियाँ से भी बचाव भी करे है और पशु जी का पूरा चाव सू खावे भी है और बाँ सू होने वाले जो उत्पादन है वो भी अच्छा होवे। और सागे सागे आप देखा कि अगर पशुओं ने आप संतुलित आहार टेमो टेम देता रहे तो आपनों जो लागत है वह कम हो जिसी और पशुओं उत्पादन जो है वो ज़्यादा होती थी गुणवत्ता अच्छी हो सी तो भी भाव जी का वह भी अच्छा मिलती। और इंगे सागे सागे पशुओं का भार और बंगी जी की उम्र है या फिर पशु गाभिन होवे या आगे दूध देने वाला पशु है तो बंगो भी विशेष रूप से आप ध्यान रखा। तो अब चला राम राम सा राम राम।
1: संतुलित आहार कैसे बनाएं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान के तहत ये जानकारी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। SIR प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद है। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक CBI 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई NEET UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का प्यार भरा नमस्कार।
1: बहनों आइए, आज सबसे पहले बात करते हैं हम अपने चारों ओर के वातावरण की, यानी हमारे पर्यावरण की, और बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। तो पर्यावरण संरक्षण करने से पहले समझ लें कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है क्या, हमें क्या करना है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, वायु, मिट्टी और जीव जंतुओं को प्रदूषण से बचाना है। बहनों ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये हम सभी का दायित्व है, क्योंकि हम सब एक स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण में रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सुरक्षित पर्यावरण मिले। और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सुरक्षित भविष्य की नींव रखें, हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करते हैं। इसलिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वनों की कटाई रोकें, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। इसके साथ ही बहनों हम प्लास्टिक का बहिष्कार करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें और कपड़े या फिर जूट के थैलों का उपयोग करें। और प्लास्टिक का जो कचरा है वो मिट्टी और जल दोनों को ही प्रदूषित करता है, और सबसे अच्छा ये होगा कि हम पानी की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें, वर्षा के जल को इकट्ठा करें और नदियों या फिर अन्य जो जल के स्रोत हैं जैसे कि झरना है, तालाब है, पोखर है, इन सभी में अपना कचरा ना डालें और प्रदूषण को नियंत्रित करें। इसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही अच्छे कदम उठा सकते हैं, जो बेहद छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे कदम हैं। जैसे कि अब यदि हमें कम दूरी पर जाना है तो हम या तो साइकिल का उपयोग करें या फिर हम पैदल चलें। बहनों इससे हमारा पर्यावरण तो संरक्षित होगा ही, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और वाहनों का जो उपयोग है वो कम करें। इसके अलावा अपनी खुशी का इजहार करने के लिए हम पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे ना जलाएं, यानी कम से कम जलाएं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पटाखों से जो धुआं होता है उससे वायु और ध्वनि दोनों ही प्रदूषित होते हैं, तो हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकें, पर्यावरण को संरक्षित करें और पटाखों का उपयोग भी कम से कम करें। बहनों हम बिजली की भी बचत करें, क्योंकि ये जब हम बिजली की बचत करते हैं ना तो इससे बिजली तो बचती ही है, साथ ही साथ हमारा व्यक्तिगत लाभ भी होता है, इससे हमारा बिल कम होता आता है, यानी हमारे पैसे की बचत होती है। इसलिए हम जब भी कमरे से बाहर निकले तो लाइट और पंखे बंद कर दें, यानी आवश्यकता होने पर ही लाइट जलाएं, पंखा चलाएं, एसी, कूलर जो भी है आवश्यकता होने पर ही चलाएं। इसके अलावा बहनों बिजली की बचत के लिए हम एलईडी जैसे जो बल्ब हैं इन सब का उपयोग करके भी हम बिजली की बचत कर सकते हैं। और बहनों हमारे घर में जो भी कचरा होता है जैसे गीला कचरा है और सूखा कचरा है, इनको अलग अलग रखें। जो हमारे घर का गीला कचरा है यानी सब्जी का और फल का कचरा है, इनका उपयोग हम खाद बनाने के लिए करें, और जो हमारे घर का सूखा कचरा है उसे अलग डस्टबिन में डालें और इसे रिसाइकिल करने के लिए अलग अलग डस्टबिन में डालेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। बहनों जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे जीवन का एक बेहतर हिस्सा है, हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे दिल की हर धड़कन को सुनते हैं, हमारी हर आवाज़ को पहचानते हैं।
2: मैं रोकूंगी, मैं अमीना बाई।
3: अमीना बाई तुम तो इंसान हो।

बहनों, हमारा जो पर्यावरण है हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। हम प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनहरा मौका मिल सके। बहनों, यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो

विकास असंतुलित हो जाएगा और पर्यावरण प्रदूषण के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत भयंकर हैं। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण से बहुत गंभीर रोग जैसे हृदय रोग है, श्वसन रोग, एलर्जी, ऐसे अनेकों गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। और जो पर्यावरण संरक्षण है हम सभी का दायित्व है, जिसको निभाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। सरकार, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और हर नागरिक पर्यावरण के महत्व को समझेगा और हमारे पर्यावरण को फिर से हरा भरा बनाने के लिए उचित कदम उठाएगा, तभी हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को सुलझा पाएंगे। बहनों, पर्यावरण संरक्षण हम सबका साझा कर्तव्य है। यदि आज हम जागरूक होकर छोटे छोटे कदम भी उठाते हैं, तो कल हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी और स्वस्थ हो जाएगी। यही होगा हमारा सच्चा विकास और हमारा मानवीय दायित्व भी यही है। पर्यावरण सुरक्षित बचेगा जब मानव सजग रहेगा। क्या जीना चाहोगे सुरक्षित जीवन? यदि हाँ, तो बनाइए संतुलन प्रकृति और मानव के बीच, ताकि वे एक दूसरे के मित्र बन सकें, ना कि दुश्मन।

बहनों, अमीर खुसरो का नाम आपने भी ज़रूर सुना होगा। वो हिंदुस्तान की हर अदा पर फिदा थे। उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बिल्कुल सही बात कही थी उन्होंने। सच में कश्मीर जाने वाला हर पर्यटक अमीर खुसरो के इस शब्द को दिल में महसूस करता है। कश्मीर आने वाला हर सैलानी इस पर फिदा हुए बिना रह ही नहीं सकता। सच में कश्मीर की जो धरती है उसे स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़ और शांत झीलें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कश्मीर का जो स्वच्छ वातावरण है वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। बहनों, कश्मीर जाने का ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, लेकिन लंबी छुट्टी की बात सोचकर हम कश्मीर जाने का प्लान नहीं कर पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी समझदारी से काम लें तो कश्मीर की सुंदरता को हम शॉर्ट ट्रिप में भी एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसकी सुंदरता के जो शब्दों में अगर हम बांधना चाहें तो उसकी सुंदरता को हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते हैं। और यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार आपको कश्मीर ज़रूर घूमने जाना ही चाहिए। ये जगह जितनी मोहक है उतनी ही शांत भी है। कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी का तरीका है वो आपके दिल को मोह लेगा और आपके हर एक पल को बहुत खास बना देगा। कश्मीर को जानने और समझने के लिए आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं। हाँ, सर्दी के मौसम में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन सर्दी के मौसम में जो कश्मीर की घाटी है वहाँ बेपनाह खूबसूरती होती है। कश्मीर के बहुत से ऐसे स्थल हैं जो आपको आकर्षित करते हैं और वहाँ की जो वादियाँ हैं आपको बिल्कुल एक पलक, मतलब बिना आप पलक झपकाए उसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं। बहनों, वहाँ के जो भी आकर्षण के स्थल हैं वहाँ की सैर भी करेंगे। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हाँ तो बहनों, अब हम बारी बारी से कश्मीर के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनको एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की, जो कि कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो अपने हाउस बोट और डल झील के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ शिकारा की सवारी और मुगल गार्डन जैसे कि शालीमार बाग और निशात बाग यहाँ प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। बात करें गुलमर्ग की, तो इसे फूलों का शहर भी कहा जाता है। ये भारत के बेहतरीन स्कीइंग और डेस्टिनेशन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ गोंडोला यानी केबल कार की सवारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और जो केबल कार है, ये आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के मनमोहक नज़ारों के बीच में से लेकर जाती है। और बहनों, कश्मीर अगर आप घूमने जा रहे हैं तो यहाँ चीड़ के जंगलों और हरे भरे घास के मैदानों को देखना ना भूलें। इसके लिए आप जाइए पहलगाम में। पहलगाम में बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं। यहाँ फोटोग्राफी लेने का एक अनूठा अनुभव, अनूठा आनंद आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, पहलगाम तीर्थ यात्रियों का भी स्वागत करता है। यहाँ की जो अमरनाथ गुफा है, भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ़ से बने शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। सोनमर्ग, जिसे कि सोने का मैदान कहा जाता है, ये अपनी ऊंची चोटियों और चमचमाते ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है। और कुपवारा का जो मनमोहक नज़ारा है वो आपको रोमांचक अनुभव देता है। ये शहर की भाग दौड़ से दूर स्थित है और इसे शांति का एक आदर्श स्थान भी माना जाता है। बहनों, इतना ही नहीं, कश्मीर में कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जैसे कि हरी पर्वत किला है। ये मुगल, फारसी और कश्मीरी स्थापत्य शैलियों का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। इसी तरह से शालीमार बाग है और निशात बाग है, ये अपने फवारों, सुव्यवस्थित रास्तों, आकर्षक बेंचों और जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो कश्मीर की भव्य पहाड़ियाँ

हैं और घाटियां हैं, इनका आनंद लेने के लिए आप घोड़े की सवारी करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा कश्मीर में गोल्फ़ खेलना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ कई गोल्फ कोर्स हैं जो आपको रोमांचक अनुभव देते हैं। इसके अलावा बहनों, यदि आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो कश्मीर के स्थानीय लोगों के बीच प्राचीन हस्तशिल्प और शिल्प कौशल की जो प्रमुख प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनकी खरीदारी करना बिल्कुल ना भूलें, वो आपको बेहद अच्छा अनुभव देगा। इसके अलावा बहनों, यहाँ आप फलों, सब्जियों और केसर बेचने वाले बाज़ारों को देखेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त होगा। और यदि आप स्थानीय बाज़ार में घूम रहे हैं तो आप वहाँ पारंपरिक रूप से बने कालीन और पश्मीना शाल खरीदना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पेपर मैश उत्पाद और असली आभूषण भी आपको खूब मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप कश्मीर जा रहे हैं तो आप सूखे मेवे की खरीदारी करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहनों, है ना बहुत ही प्यारा कश्मीर, और फिर से जी चाहता है कि हम भी अमीर खुसरो की तरह यही कहें कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।

जन्नत क्या होती है ये तो नहीं मालूम, मगर हम कश्मीर की सुंदरता को ही जन्नत पुकारते हैं। और बहनों, यदि आपने जन्नत का आनंद लेना है तो आप मार्च से लेकर मई तक कश्मीर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और फिर सर्दी में जाना चाहते हैं तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक कभी भी जाइए। इस मौसम में आप जाते हैं तो वहाँ आपको बर्फबारी और सफ़ेद चादर से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे, और ये सबसे अच्छा मौका है वहाँ घूमने का। और बहनों, यदि आपका भाग्य अच्छा है तो एक बार आप किसी कश्मीरी के घर पे ज़रूर जाइएगा और वहाँ के लोकल खाने का आनंद ज़रूर लीजिएगा। फिर आप जानेंगे कि कश्मीरियों की मेहमान नवाजी क्या होती है, और उनकी आनंद है आएगा आपको, वो आपकी हर पल को बहुत खास बना देगा। और यदि आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो कश्मीर के बेहतरीन पर्यटन स्थल है लेह और लद्दाख, वहाँ की योजना बनाना भी ना भूलें, क्योंकि लेह और लद्दाख है जो कश्मीर के बेहद करीब हैं और ये हिमालय पर्वतमाला को साझा करते हैं। अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र ट्रैकर्स और बाइकिंग के शौकीन लोगों के लिए बेहद लोकप्रिय है। और अब लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बहनों, हम सभी वज़न को घटाना चाहते हैं और यदि हम वास्तव में अपने वज़न को घटाना चाहते हैं तो हमें अपने भोजन की थाली में सब्जियों को अधिक जगह देनी होगी। सब्जियां वज़न घटाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और पानी से और फाइबर से भरपूर होती हैं, जिससे कि हम अपने पेट को भरा हुआ महसूस करते हैं और हमें पूरी संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती है। बहनों, अगर हम अपने वज़न को घटाना चाहते हैं तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और केल, इन सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है, पत्ता गोभी है और फूल गोभी है, इन्हें भी अपने भोजन में शामिल करें। जो पत्ता गोभी और फूल गोभी है इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और इनसे पेट जल्दी भर जाता है, जिससे कि आप कम खाते हैं। बात ब्रोकली की करें तो इसमें फाइबर होता है, विटामिन सी होता है और ये हमारे वज़न को कम करने में सहायक होता है। पालक और मेथी, इसमें भी कैलोरी बहुत कम होती है, फाइबर बहुत उच्च मात्रा में और आयरन भी खूब पाया जाता है। इसके अलावा बहनों, जो पानी से भरपूर सब्जियाँ हैं जैसे कि खीरा है, लौकी है, तोरी है, ये भारतीय रसोई में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, फाइबर से भरपूर हैं और पचने में बहुत हल्की हैं। इसके अलावा बहनों, कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको अपने भोजन में हम ज़रूर शामिल करें, जैसे कि शिमला मिर्च है और मशरूम है। मशरूम में प्रोटीन बहुत अधिक होता है और शिमला मिर्च जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज करता है। तो ऐसी सब्जियों को अपने भोजन में हम शामिल करें और अपने वज़न को नियंत्रित करें। अब बहनों, होता ये है कि हम ऐसी सब्जियों को अपने भोजन में शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन इनको पकाने के लिए खूब सारा तेल और खूब सारे मसाले यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें लगता है हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन बहनों, स्वाद तो बढ़ सकता है लेकिन ध्यान रहे, हमारी सेहत के लिए ये नुकसानदायक हो सकती हैं और हमारे वज़न को भी घटाने में कोई मदद नहीं करेंगी। इसके लिए इन सब्जियों को आप तेल और मसाले में पकाने की बजाय इसे सलाद के रूप में लें, इसका सूप बनाएं या फिर हल्का स्टीम करके इन सब्जियों को लें। और बहनों, अक्सर हमें ये भी शिकायत होती है कि क्या करें, ये सब्जियां फ़ायदेमंद तो बहुत हैं लेकिन बच्चे ऐसी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे तोरी है, लौकी है, घिया है। तो बहनों, इन सब्जियों को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, बच्चों को भी खूब स्वाद दे सकते हैं। इन सब्जियों को हम बच्चों को सैंडविच में दें, पोहा वगैरह बनाते हैं तो पोहा में डाल कर दें, बच्चों को सलाद बना कर दें, स्मूदी के रूप में दें, तो बच्चे भी खूब चाव से इन सब्जियों को खाएंगे, इन सब्जियों का आनंद लेंगे और बच्चे भी अपने वज़न को नियंत्रित रख पाएंगे। और अब प्यारा सा गीत।

बहनों आइए अब हम कर लेते हैं कुछ काम की बातें जो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगी। बहनों इस बात को हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम नहीं आती हैं, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे बहुत काम की भी होती हैं। कई बार हम उन चीज़ों को छोड़कर फालतू की चीज़ों में अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे में असफलता हमारे हाथ लगती है, फिर हम दोष देते हैं भाग्य को और ईश्वर को। तो बहनों हम समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में गलती हमसे कहाँ हुई। तो कोई भी काम करने से पहले हम सही और गलत को अच्छे से समझ लें। इसके अलावा बहनों हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ मन और मस्तिष्क हो तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो खेलकूद और पढ़ाई के बीच हमेशा संतुलन बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में योग्यता, कुशलता या हुनर यदि है तो हम सफल होते ही हैं। इसलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए हम किसी भी एक काम में कुशलता ज़रूर हासिल करें। बहनों बात अगर हम बुरी संगत की करें तो ये तो उस कोयले की तरह है जो गर्म है तो हाथ को जला देता है, और वो कोयला अगर ठंडा है तो हाथ को काला कर देता है। ऐसे ही बहनों बुरी संगत होती है जो हमारे

जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए वो दोस्त जो अच्छे नहीं हैं उनसे हम दूर रहें और अच्छे दोस्तों को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि ये हमारे संबंधों के दायरे को बहुत बढ़ाते हैं। इसके अलावा अनुभव कैसा भी हो, हमारे जीवन में जो भी हमें अनुभव मिलता है वो हमारे काम आता ही है, क्योंकि अनुभव से हम बहुत सी बातों को आसानी से समझ पाते हैं। और एक बात ये भी है कि बोलना भी एक कला है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना और कैसे बोलना है, ये सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अब ज़रूरी तो ये भी हो गया है कि हम एक प्यारा सा गीत सुनें।

बहनों, इन जाते हुए लम्हों को हम रोक तो नहीं सकते, इसीलिए आपकी बहन उर्मिला भी आपसे आज्ञा चाहती है। नमस्कार, और आपसे बस यही कहती है, मैं भी चलूं।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द विंडे न्यूज। The headlines. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of

0: 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया

कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर

0: हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री

0: मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं और अब समय है फिल्म संगीत का। लीजिए कार्यक्रम के आगाज में आपको सुनवाते हैं ये गाना जिसे हमने लिया है अमर प्रेम फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत राहुल देव बर्मन का।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ थी, मजरू का लिखा गीत और तर्ज थी आर डी बर्मन की। लीजिए अनजाना फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। शब्दकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए अब आपको सुनवाती हैं रूप तेरा मस्ताना। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए लता की आवाज़ आपको सुनवाते हैं फिल्म आंखें में। गीत साहिल उद्यानवी का है और गीत रवि का, संगीत रवि का।

अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर, DRM 909 किलो हर्ट्ज़ पर, FM बैंड 2.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और अब समय है उर्दू सर्विस का, जो आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुमन अली खान से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा किया है। CBI ने नीट UG 2026 इम्तिहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज़ करार दिया है और यह भी कहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए

आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफ़ा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह जहाँ तक मुमकिन हो एहतियाती इकदामात करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया कि वह जिस्म में पानी की कमी न होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने कुनबों के अफराद और अपने अजीज़ों की खैर वाफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज़ धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शिमाल मशरक़ी खित्ते में इतवार तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। राजस्थान में जारी शदीद गर्मी के पेश नज़र रियासत के 5 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा डिवीज़न और शेखावती खत्ते के कुछ हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 46 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागपुर, बीकानेर और दौसा समेत कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने कहा है कि मुल्क में अभी तक इबोला वायरस के मर्ज का कोई वाकया पेश नहीं आया है। सेहत के मरकजी वजारत ने कहा है कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी के फैलने के बाद से एबोला की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। जराए का कहना है कि हाल ही में एक शख्स युगांडा से आया था और इस शख्स में जिस्म में मामूली दर्द होने की अलामत पाई गई थी, लिहाजा उसे बेंगलुरु में देखभाल और तिब्बी इलाज व मुआलजे के लिए सरकारी एपिडेमिक डिजीज़ हॉस्पिटल में अलग थलग रखा गया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज़्यादा मुतहरक कारोबारी इको निज़ाम की ज़रूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफैन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया।

लीजिए, आप सुनिए दहलीज फिल्म की गजल, महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह के गाई हुई। कलाम है हसन कमाल का, मौसीकी रवि की।

और लीजिए मेरी पसंद प्रोग्राम के आखिर में सुनिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म की गजल मौसीकी रविंद्र जैन की। आवाज़ हेमलता की।

मैं जो कुछ देख रहा हूं उस सब के बावजूद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में मेरा यकीन बहुत पुख्ता है। सच तो यह है कि अगर मेरे अंदर ये यकीन ना होता तो मेरे लिए मौसर तरीके से काम करना भी मुमकिन ना होता। हालिया वाकयात ने मेरे बहुत से पुराने ख्वाबों को मुंतशर किया है, मगर एक बुनियादी नसबुल हैन मेरे साथ है और कोई वजह नहीं कि मैं उसे तर्क कर दूं।

ये नस्ब العین क्या है? बड़े आदर्शों पर मबनी एक आजाद हिंदुस्तान की तामीर और ये कोशिश कि सबको तरक्की के एक से मौके मिले, ये कोशिश कि तहजीबों के और तसव्वुरात के रंगारंगधारे आपस में मिलजुल कर इर्तिका के एक ताकतवर दरिया की सूरत इख्तियार कर लें।

तुम मुसलमान हो, मैं एक हिंदू हूं। हम अलग अलग अकीदे रख सकते हैं या चाहें तो कोई भी अकीदा ना अपनाएं, लेकिन वो मुश्तरका तहजीबी मीरास जो तुम्हारी भी है और मेरी भी है, वो हर हाल में हमारी रहेगी। हमारा माजी एक है, इस माजी ने हमें आपस में बांध रखा है। फिर ऐसा क्यों हो कि हाल और मुस्तकबिल हमें एक दूसरे से दूर कर दे।

0: साहिबो, नेहरू जी ने ये अल्फाज आज से 40 बरस पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों और असातिज़ा को खिताब करते हुए कही थी। इन लफ्जों में छुपा हुआ संदेशा आज भी हमारे लिए बामानी है।
1: और साहिबो, इन लफ्जों का सिलसिला हमें दूर उफ्तादा यादों की एक बस्ती का रास्ता दिखाता है। वो बस्ती भी अलग अलग सिमतों से आती हुई लहरों को एक दूसरे से मिलाती है।

0: गंगा और जमुना के संगम पर बसा हुआ शहर इलाहाबाद, जहां मुगल बादशाहों ने बाग बनवाए और किले और मकबरे और मस्जिदें।
1: इस शहर का एक और नाम प्रयाग है, जहां कुंभ का मेला लगता है और जहां मुकद्दस गंगा और जमुना के अलावा एक अनदेखी लहर सरस्वती के नाम से जानी जाती है।

0: नेहरू जी का जन्म इसी शहर में हुआ था। यूनिवर्सिटी के करीब से एक सड़क जो संगम की तरफ जाती है, इसी सड़क पर एक खूबसूरत हवेली है, आनंद भवन।
1: आनंद भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, एक तारीख भी है। नेहरू जी के बचपन और लड़कपन की बहुत सी यादें आनंद भवन से मंसूब हैं। इस इमारत ने कितने मौसम झेले, दुख के और सुख के, गुलामी के और आजादी के। ये इमारत हमारे सफर की गवाह भी रही है।

अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ सोचना पसंद करे, मैं चाहूंगा कि वो इतना जरूर कहे कि इस शख्स ने अपने तमाम तर दिल और दिमाग के साथ हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत की, और इसके बदले में इन लोगों ने भी उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश की।

0: नेहरू जी की शख्सियत के कई रूप हैं। एक सियासी मुदब्बिर,
1: एक दानिश्वर,
0: एक सामाजिक कारकुन,
1: एक कौमी मेमार,
0: एक फलसफी,
1: एक अदीब
0: और एक खाद परस्त।

0: इस शख्सियत के कितने रूप हैं और हर रूप के कितने रंग।
1: श्री प्रकाश ने कहा था,
0: नेहरू जी को अपने बारे में बातें करने की आदत नहीं। अपनी अजमत को उन्होंने इस सहूलत के साथ संभाल रखा है कि वो बज़ाहिर आम इंसानों जैसे दिखाई देते हैं, हर जगह हर माहौल में खुश और मुतमईन, अपने गिर्दोपेश से अच्छी तरह हम आहंग।
1: नेहरू जी के एक दरीना रफीक, एक मुमताज सहाफी चिलापति राव के लफ्जों में,
0: उनकी शख्सियत बहुत मरबूत और मिलीजुली थी। तालीम के लिहाज से अंग्रेज, सकाफत के एतबार से मुसलमान और पैदाइश के लिहाज से हिंदू, इस एक वहदत में कितनी कसरतें आबाद थीं।
1: और कैसी जिंदा तवाना फाल शख्सियत थी, एक शख्सियत जिसने अजमतों के हिसार में भी अपनी इंसानियत को महफूज रखा। अपने एक दोस्त के लफ्जों में,
0: जवाहरलाल बहुत सुबह सवेरे उठ बैठते थे, कुछ वर्जिश करते थे, फिर नाश्ता। मुख्तलिफ औकात के खानों में सबसे ज्यादा मजा उन्हें नाश्ते के वक्त आता था। खुद दलिया खाते, मेहमानों को बड़ी नफासत के साथ तराश कर फलों की काशें पेश करते जाते, दिलचस्प कहानी सुनाते।
1: नाश्ते के बाद वो नीचे उतरते और बाहर जाते, मिलने वालों की एक भीड़ जमा होती,
0: उनसे फारिग होकर अपने पालतू जानवरों की फिक्र,
1: फिर दफ्तर की तरफ। एक एक मिनट का हिसाब मुकर्रर था।
0: सरकारी ओहदेदार, बैरूनी मेहमान या दूसरे लोग, उनसे मुलाकातें। इतने में दोपहर आ जाती।
1: दिन का खाना बहुत हल्का होता था, कभी हिंदुस्तानी कभी मगरबी, फिर एक वक्फा आराम का
0: और फिर दफ्तर के काम। इस तरह शाम हो जाती।
1: शामों को कभी लोगों से मुलाकात और मजाकरात, कभी किसी जलसे से खिताब, कभी वक्त मिला तो कोई कल्चरल प्रोग्राम देख लिया।
0: खतों किताबत के मामले में भी वो बहुत चौकस थे, आने वाले हर खत का जवाब देते थे। बहुत से खत बोलकर लिखवाते, बहुत से खत खुद लिखते।
1: ये एक गैर मामूली इंसान की रोजमर्रा आम जिंदगी का बजाहिर आम सा खाका था। इसी खाके में हमें कई गहरे, घने, पुरपेच और पुर असरार नक्श भी नजर आते हैं।
0: वो आंखें जिन्होंने नेहरू जी को देखा था, हमें बताती हैं
1: कि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की तरह आम आदमी में उनका यकीन बहुत मुस्तहकम था। वो आम आदमियों से आम आदमी की सतह पर मिलते थे, गुस्से या धमकी के बजाय हर एक को दलीलों से कायल करते।
0: उन्हें मामूली से मामूली काम करने में तकल्लुफ न होता, नौकरों को ना वक्त कभी जहमत न देते।
1: आम आदमियों के अंदाज में बात करते, गहरे मसलों को भी सीधी सादी जबान में पेश करने का फन खूब जानते थे।
0: उनकी मजहबियत भी यकसर गैर मजहबी थी। अपने रवैयों की हर सतह पर वो एक सेक्युलर इंसान थे। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल पर साइंस और रूहानियत दोनों की हुक्मरानी रहेगी।
1: वो अफसरदा भी होते थे, कभी नाराज और दिल बर्दाश्ता भी, मगर एक अनोखी ताकत उनके अंदर मौजूद थी। हर हाल में अपने सुकून को वो कायम रखते थे। ये सुकून एक गहरी रियाज

0: तक एक दाखिली तरबियत का तोहफा था।
1: नेहरू जी खुदा के मजहब से ज्यादा इंसानियत के मजहब में यकीन रखते थे। वो मुदब्बिर थे, सियासतदान नहीं। अकल से ज्यादा भरोसा उन्हें बसीरत पर था।
0: नेहरू जी की शख्सियत एक तख्लीकी इंसान की शख्सियत थी। जिंदगी के आम मामलात में उनका रवैया एक जदीद इंसान का रवैया था, साइंसी और अकलियत पसंदाना। मगर उनकी बसीरत मंतिक अक्साइंसी फिक्र से आगे जाने की ताकत भी रखती थी।
1: मुमताज मौर्रिख टॉयनबी ने कहा था, नेहरू के लिए सियासी जिंदगी अपनी अहमियत के बावजूद उनकी अपनी हस्ती का सबसे बड़ा उंसुर नहीं थी।
0: अकलियत की तरह सियासत भी नेहरू जी के नजदीक अपनी हुदूद रखती थी।
1: उनके लिए सियासत अपने गिर्दोपेश के लोगों की खिदमत का एक वसीला थी,
0: और फिर खिदमत का ये सिलसिला भी अपने वतन की हदों से आगे पूरी इंसानी बिरादरी तक जा पहुंचा।
1: ये शख्सियत एक वसी कसीरुल जिहाद शख्सियत की तरह एक साथ कितने रंगों को समेटती थी,
0: एक साथ कितने सिमतों में सफर करती थी खुशबू की तरह।

0: गए जमानों की कितनी तस्वीरें एक साथ मेरे दिमाग में आन बसी हैं। मैं उन तस्वीरों को मुतहर्रिक देखता हूँ। बनारस के करीब सारनाथ में मैंने सिद्धार्थ को देखा अपना पहला आवाज देते हुए।
1: सम्राट अशोक के कतबे अपनी अजीम शान जबान में उनसे खिताब करते हैं
2: और फतेहपुर सीकरी के आसार में वो शहंशाह अकबर को देखते हैं मुख्तलिफ अकीदों के उलमा से बातें करते हुए।
3: नेहरू जी ने कहा था,
0: मुझे देवमालाएं अच्छी लगती थीं। मैं अनहोनी बातों और जादू टोने के किस्सों में यकीन नहीं रखता था, मगर देवमालाओं में इंसानी तखय्युल की एक भरी पूरी, एक अनोखी और पुरसरार कायनात सांस लेती है।
3: नेहरू जी ने कहा था,
0: मैं फुनून को भी इसी नजर से देखता हूँ कि इनमें इंसानी तखय्युल के कैसे कैसे भेद छिपे हुए हैं। किसी तस्वीर या मुजस्मे की तरफ देखते हुए कभी मेरा दिल मसरत के एक एहसास से भर जाता, कभी ऐसा लगता कि अंदर ही अंदर कोई बेनाम, कोई नाकाबिले बयान कैफियत जन्म ले रही है।

0: जिन आंखों ने नेहरू जी को देखा है, उस शख्सियत को उसके हर रूप में सामने लाती हैं। एक रूप ये है।
1: दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेट पंडाल में मौजूद थे। खुले इजलास में रेला जो आया, धकाधकी शुरू हो गई।
2: पंडित जी पहले तो मजमे को नागावारी से घूरते रहे, दो तीन बार गुस्से में हुमके, फिर कूदकर मजमे में पहुंच गए। धपा धप लोगों के कांधों पर हाथ मारने लगे। जिस कांधे पर भी हाथ पड़ा वो नीचे बैठ गया।
1: बेगम अनीस कदवाई का बयान है कि अपनी इब्तदाई जिंदगी में पंडित जी शोलाए जवाला थे, मगर जंगे आजादी में शरीक हुए तो हैरत होती थी, इतने सुलह जो कैसे हो गए। बादशाहों जैसी मुतलव मिजाजी रखते हुए ऐसे मुस्तकिल मिजाज जमहूरियत पसंद कैसे हो गए।
0: ये एक हैरान कर देने वाली हस्ती थी। एक तरफ जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बरकतों से अच्छी तरह बाखबर,
2: दूसरी तरफ साइंसी फिक्र की नारासाई का एहसास भी।
0: एक तरफ एक नए माशरे की तामीर का हौसला,
2: दूसरी तरफ माजी और हाल में एक नए रिश्ते की तलाश।
0: एक तरफ हकीकत पसंदी पर जोर,
2: दूसरी तरफ एक ख्वाब परस्त और रूमानी।
1: प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी के लफ्जों में,
2: पंडित जी हिंदुस्तान की आबरू, मशरक की इज्जत और तहजीब तरक्की की

0: अलामत थे। उन्होंने तारीखी तसानीफ का गरा कद्र जखीरा छोड़ा है और अपने अदबी ज़ौक, जौदते फिक्र, साइंसी मिजाज और नफ्सियाती बसीरत से फिक्र इंसानी को समझने की कोशिश की है।
1: उन्होंने तारीख को वाकयात की खतौनी नहीं बनाया बल्कि उसे कौमी हाफ़ज़े की बाज़याफ़्त का ज़रिया बनाया है।
2: इसीलिए ये फैसला दुश्वार है कि वो बड़े दर्जे के सियासतदान थे या मुअर्रिख़ या अदीब।

0: नेहरू जी ने एक कौम को बनाया, एक नए माशरे, एक नए तरक्की पजीर कल्चर की दाग बेल डाली, एक नए जहन की तश्कील की
1: जो हर तरह के तवहमात से आजाद हो,
2: जो अपने मुश्तरका मीरास में यकीन रखता हो,
1: जो मजहबी इदाइयत, तासुब और फिरका परस्ती और जहालत के खिलाफ सरगर्म हो,
2: जो तारीख के एक मुसबत और रोशन तसव्वुर से बहरावर हो,
1: जो माजी और हाल और मुस्तकबिल के रिश्तों को समझ सके,
2: जो पुराना भी हो और नया भी,
1: जो अपने हाल में गुम ना हो और अपने माजी और अपने मुस्तकबिल दोनों को अजीज रखता हो।

0: नेहरू जी की तसानीफ में इसी जहन का इजहार हुआ है।
1: रात दिन की मसरूफियतों के बावजूद अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में कैदोबंद की सख्तियां झेलते रहने के बावजूद,
0: समाजी तामीर और कौमी इर्तिका के कामों में मसरूफ रहने के बावजूद,
2: नेहरू जी ने अपने ख्यालों और ख्वाबों के चराग रोशन रखे।
1: उन्होंने संगलाख जमीनों में फूल उगाए।
0: ये वाकया अहमदनगर के किले में असीली के जमाने का है। वक्त का सही मसरफ क्या हो, रफीकों ने फैसला किया सहन जो वीरान पड़ा हुआ है उसमें एक बाग लगाया जाए। मौलाना आजाद की जबानी ये कहानी सुनिए।
2: जमीन की दुरुस्तगी का मामला इतना आसान न था। अहाते की पूरी जमीन दरअसल किले की पुरानी इमारतों का मलबा है। जरा खोलिए और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और चूल्हे और रेत का बुरादा हर जगह निकलने लगता है।
1: तख्तों के दाग बेल डालकर दो दो तीन तीन फीट जमीन खोद दी गई। बाहर से मिट्टी और खाद मंगवा कर उन्हें भरा गया। कई हफ्ते इसमें निकल गए। जवाहरलाल सुबह शाम फावड़ा और कुदाल हाथ में लिए कुहकुंदन और काह बर आवर्दन में लगे रहते थे।

0: ये
1: ये
0: किताब
1: किताब
0: 1944
1: 1944
0: के
1: के
0: अप्रैल
1: अप्रैल
0: से
1: से
0: सितंबर
1: सितंबर
0: तक
1: तक
0: 5 महीनों के
1: महीनों के
0: दौरान
1: दौरान
0: मैंने
1: मैंने अहमदनगर
0: अहमदनगर के
1: के
0: कले में
1: कले
0: लिखी
1: में
0: थी।
1: लिखी थी।
0: मुझे नहीं
1: मुझे नहीं
0: मालूम कि
1: मालूम
0: लोग
1: लोग
0: अपनी
1: अपनी
0: तहरीरों
1: तहरीरों
0: के
1: के
0: बारे
1: बारे
0: में
1: में
0: क्या
1: क्या
0: महसूस
1: महसूस
0: करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं।
0: मैं तो जब
1: मैं तो जब
0: अपनी
1: अपनी
0: ही
1: ही
0: पहले
1: पहले
0: की
1: की
0: लिखी
1: लिखी
0: हुई
1: हुई
0: कोई
1: कोई
0: चीज
1: चीज
0: पढ़ता
1: पढ़ता
0: हूं
1: हूं
0: तो
1: तो
0: एक
1: एक
0: अनोखी
1: अनोखी
0: सनसनी
1: सनसनी
0: का
1: का
0: एहसास
1: एहसास
0: होता
1: होता
0: है।
1: है।
0: ये
1: ये
0: एहसास
1: एहसास
0: उस
1: उस
0: वक्त
1: वक्त
0: और
1: और
0: शदीद
1: शदीद
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है
1: है
0: जब उस
1: जब उस
0: तहरीर
1: तहरीर
0: ने
1: ने
0: कैद
1: कैद
0: खाने
1: खाने
0: के
1: के
0: अजीबो
1: अजीबो
0: गरीब
1: गरीब
0: माहौल
1: माहौल
0: में
1: में
0: जन्म
1: जन्म
0: लिया
1: लिया
0: हो
1: हो
0: और
1: और
0: उसे
1: उसे
0: कैद
1: कैद
0: से
1: से
0: बाहर
1: बाहर
0: की
1: की
0: खुली
1: खुली
0: फजा
1: फजा
0: में
1: में
0: पढ़ा
1: पढ़ा
0: जा
1: जा
0: रहा
1: रहा
0: हो।
1: हो।
0: मैं
1: मैं
0: अपनी
1: अपनी
0: इस
1: इस
0: तहरीर
1: तहरीर
0: को
1: को
0: पहचान
1: पहचान
0: तो
1: तो
0: लेता
1: लेता
0: हूं
1: हूं
0: मगर
1: मगर
0: पूरी
1: पूरी
0: तरह
1: तरह
0: नहीं।
1: नहीं।
0: लगता
1: लगता
0: है
1: है
0: किसी
1: किसी
0: और
1: और
0: के
1: के
0: लिखे
1: लिखे
0: लफ्ज
1: लफ्ज
0: हैं
1: हैं
0: जो
1: जो
0: जाने
1: जाने
0: पहचाने
1: पहचाने
0: से
1: से
0: हैं।
1: हैं।
0: लिखने
1: लिखने
0: वाला
1: वाला
0: मुझसे
1: मुझसे
0: करीब
1: करीब
0: तो
1: तो
0: था
1: था
0: मगर
1: मगर
0: नामानुष भी
1: नामानुष
0: था।
1: भी था।

ये हाथ बागवानी सहरा के आदाब से वाकिफ थे। इन हाथों ने कुदाल भी उठाया और कलम भी।

जितनी पहलूदार और रंगारंग वो शख्सियत थी, उतनी ही रंगारंगी हमारी जिंदगी और हमारे मौशरे में है। उसकी कामरानियों और कोशिशों का दायरा एक साथ कितनी दुनियाओं में फैला हुआ है। खुशबू की एक लहर है जो अपनी हदों में आने वाली हर शय को, हर शख्स को एक संदेशा दे जाती है। यह संदेशा सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक कौम की इज्तिमाई तारीख और तहजीब का संदेशा भी है। रास्ते की हर दुश्वारी, हर दीवार को पार करती हुई उस लहर का सफर अभी जारी है।

लीजिए सुनिए, होटल फिल्म का तो गाना आशा भोसले और मोहम्मद मनहर उदास की आवाज़ों में, नगमा निगार इंदिवर, मौसीकी उषा खन्ना की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हम हिंदुस्तानी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ, तर्ज बनाई है उषा खन्ना ने।

यह है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गुलिस्ता हमारा फिल्म का नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।

ओली जेपसन ये साजन फिल्म का नाफमा मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आनंद बख्शी के बोल मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, अब क्या होगा फिल्म का टाइटल सॉन्ग, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ, मौसीकी उषा खन्ना की।

0: हुस्न परियों सा कहां से लाई हो बोलो।
1: अब क्या होगा फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, और इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप माजी दिल्ली से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेज़ी आने की पेशगोई की है। भारत और कनाडा ने 2030

बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका ईरान बातचीत में इमकानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गज़ा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है और उसने ही 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मनसूबा साजी की थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज़ करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आइन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतल्लिक कानून मजरिया 1950 की दफ़ा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम गैंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के सातवें जलसे तकसीम इसनाद में मेहमान खसूसी होंगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि 33 मजामीन में तकरीबन 14,000 डिग्रियां अता की जाएंगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज़्यादा मुतहरक कारोबारी इको निज़ाम की ज़रूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वो जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वो अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर वाफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। राजस्थान में जारी शदीद गर्मी के पेश नज़र रियासत के 5 अज़ला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा डिवीज़न और शेखावती खित्ते के कुछ हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। हमारे नवनगार ने खबर दी है कि रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल पर गौर करने से इनकार पर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राम ने शदीद नुक्ताचीनी की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राम ने कहा कि ईरान से वाबस्ता किसी भी सिफारतकारी में इस्लामाबाद का रोल मसले पैदा कर सकता है।

0: अमेरिका के शहर अंडर नहीं, ये दावा भी किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। अमेरिका के सेना जनरल लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। ग्राम ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अब्राहम समझौते पर शामिल होने की सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का वाज़े तौर पर जवाब दे। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने के नजरिए को रद्द कर दिया था। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश तैयार करने वाले बड़े मुलजिम मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है। इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर के साथ एक मुश्तरक बयान में इसराइली फौज ने कहा है कि वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल कार्ट्स ने इस कार्रवाई का हुक्म दिया था। इसराइल ने उदय पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली आम शहरियों और फौजियों की हलाकत, उन्हें अगवा करने और उनके जख्मी होने में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था। मोहम्मद उदय ने हाल ही में इज़ादीन अल हद्दाद की जगह ली थी जो इसराइल के इससे पहले के हमले में मारा गया था। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हर उस शख्स को निशाना बनाता रहेगा जो 7 अक्टूबर के हमलों में मुलविस है। इधर इसराइल ने जनूबी लबनान में शदीद फदाई हमले किए हैं। मीडिया इतलात के मुताबिक कल इन हमलों में 31 अफराद मारे गए जबकि 40 जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में तेजी आने के तनाजुर में नेतन्याहू ने फौज को हिजबुल्ला ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया था। इसी के बाद जनूबी लबनान में ये हमले किए गए हैं। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवतन नैनी अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरक अहद का अदा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गजा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी शुरू की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजे चाहते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: एफ एम बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्र है। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ड सर्विस सिंधी ए पंजाबी सेवाई शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू होंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम जोक माही दी।

326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर और DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओं युववाणी के आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे और साथ ही आपकी मनपसंद के कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं इंसान को आगे बढ़ने के लिए जीवन में सबसे ज़रूरी होता है उसके आचार विचार, उसकी गरिमा, उसके भाव, उसका चरित्र और व्यक्तित्व। साथियों हमारे संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार, जिन्हें हम मूलभूत अधिकार भी कह सकते हैं, वो प्रदत्त है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारे बहुत सारे कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनका पालन हमें करना ज़रूरी होता है। वो कर्तव्य चाहे इंसान के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति। कर्तव्यनिष्ठ हर इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। यह गुण हम सब में होना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठता इंसान के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाती है, जिसमें किसी भी कार्य को जिम्मेदारी से करने की इच्छा और दूसरों के प्रति दायित्वों को गंभीरता से निभाने की प्रवृत्ति होना जरूरी है। स्वतः कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सहज और कुशल व संगठित होता है। आत्म अनुशासन का पालन करने के साथ साथ किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक विचार, बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने की कोशिश, अपने से बड़ों का आदर, मान सम्मान और हमेशा सजग और सतर्क रहने का गुण हर इंसान में होना जरूरी है। अनुभव के प्रति खुलापन, अपने किसी भी कार्य को निरंतर एक मंजिल समझकर करना और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से, हर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना। चर्चा और भी करेंगे, बहरहाल शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम की।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो कार्यक्रम के आरंभ में गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था नदिया के पार। पसंद आप सभी की थी। मसीता डब्बा वाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढूकिया, इवाधारिणिया। 5 BNPM केकर वाली जोड़ी से अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गब्बाणकर, राही, श्रीमती सरिता गब्बाणकर, प्रणीता, सिद्धांत गब्बाणकर, अर्जुन गब्बाणकर, टुक टुक। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गब्बाणकर, सुमित गब्बाणकर, कुमारी धवनी गब्बाणकर, परी, प्रिंस और एकांश गब्बाणकर। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। अर्जुन सर से भास्कर दौलत, पंकज, आरती, अंजलि। वार्ड नंबर 10 सूरतगढ़ से ज्योति, आराध्या, दीक्षा, गंगा, भावना, संदीप ओझा। अनूपगढ़ से सुमन, पूजा और स्वाति। श्रीगंगानगर से पवन कुमार शर्मा और उनके परिवार के लोग।

बठिंडा रोड डब्बावाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आपने आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म गुमराह का गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद आप सभी की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। गांव मोकल सर श्री गंगानगर से शिव सारस्वत, मोहित शर्मा और विजय कुमार बिश्नोई। अर्जुन सर से राजेंद्र कुमार ओझा और जयप्रकाश ओझा। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है मक्खू फिरोजपुर पंजाब से बिल्ला बजाज।

हमें भेजी है मक्खू, फिरोजपुर पंजाब से, बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज ने। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल राठौड़, इनके साथ निशा और परिवार के लोग। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव। विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहब विराही और मेहराज जहां। बहलोल नगर से हरी सहरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव नलोई शिवानी मंडी हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म रोटी का ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। मुक्तसर से बाबू सिंह देवान, बलजिंदर कौर देवान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिशेल खन्ना, किंसुक खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। बीरवाणा से मुखराम शर्मा। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। फाजिलका रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला, जगतार और जग्गा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और इनके साथी। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा।

हेमलता की आवाज में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था आंखियों के झरोखों से। श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के कुछ गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, पसंद आप सभी की। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणुवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, ओम प्रकाश निरानिया और मंजू देवी। संगीत शायरी रेडियो ग्रुप से मोनिका जैन, कविता शर्मा, वंदना तिवारी और भूपेंद्र सुथार। ऊनमंडी बीकानेर से जितेंद्र रिंटोड़, मुकेश चौधरी, सत्यनारायण और इनके साथी। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है गांव खारिया सरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश और अंशु ने। गौरव, अनिल, मानसी, कविता अरोड़ा, कीर्तिनगर, नई दिल्ली से। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। जलालपुरा सहारनपुर यूपी से शरण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति। गांव होडू बालोत्रा से उम्मेदाराम, सुरेश कुमार, मदन चौधरी और सुरतेश गोदारा। गांव लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रीना, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज, विरकी और इनके साथी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके साथी। जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष। आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कामचोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना इंडीवर की, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद आप सभी की, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशव और रिधान खुराना, सिरसला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनग्रा प्राची सोनग्रा सोमल सोनग्रा कार्तिक सोनग्रा और इनके परिवार के लोग, रातानाड़ा जोधपुर से नरेंद्र भाटी वीणा भाटी अरविंद और सरोज भाटी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी तुलसी लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे संदीपा घटे साक्षी घटे अंजलि करवा बाला साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय ट्यूल बीपी कुलथे, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया हिना शकीला जस्मीन और इनके साथी, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकन वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा बंटी बबली वर्मा, उमरकोट मोहला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अबान अब्बासी और इनके परिवार के लोग, राजकोट से अमित जैन हेतल जैन कृष्णा जैन और राजेश जैन, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देवांगन, भोला कॉलोनी धरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान कांता रानी गुंजन साहिल वाणी जयजान और इनके साथी, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा और शगुन बारासा, ढाणी लाल खां से जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां और इनके साथी, चक 6 एमएसआर अनूपगढ़ से रमेश कुमार समीर रामदेव पारुल अंशुमान और इनके साथी, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग अंजना रानी गर्ग रवि गर्ग शिल्पा गर्ग और इनके साथी, आइए सुने आप सभी की पसंद पर ये गीत।

भीगी पलकें, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर चक 15 PSC सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन, वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन, चक 78 एलन से डॉक्टर विचित्र सिंह और अरविंदर सिंह, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, गांधी पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, खुशबू नामदेव, साक्षी नामदेव, सपना और शिवम नामदेव, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से डॉक्टर गोयल कंडियारा, मन्नू कंडियारा, गांव नथाणा पंजाब से अजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, बीकानेर से रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम और बिट्टू झाम, गांव लोगट ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी, गांव कल्याणा मलका जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा,

श्रीकर्णपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, सांगली से अल्फात हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीर्त हुजरे और रेहान शेख, गांव नोलारामपुरा से सुरेंद्र डीडन, शकीला डीडन, संदीप अनवर, अक्कू बावरा और इनके साथी।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजे हैं कार्यक्रम विवरण में। सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पत्रोत्तर। उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।

कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर, रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और चंद गीत। स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा। समाचार संध्या का वक्त रहेगा रात्रि 8:45।

सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से।

अनुप्रसारित किया जाएगा। आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो मनभावन आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। आज प्रस्तोता होंगी लक्ष्मी, निदेशक और संयोजक नवीन सिसोदिया।

रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। हमारी सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम सिराय की।
1: हाँ ठहर गए थे। आज उम्मीद करें ना कि जो श्रोते आज इस प्रोग्राम को सुन सन होना को जरूर ये प्रोग्राम पसंद आसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तुहाडा अपना ताबेदार हिसार तू आना जी में ते प्रमोद चोपड़ा जी भी पहले तुहाडे सामने आ चुके हैं। आज वल साडे स्टूडियो च हैं, साडी खुशनसीबी है। ते मैं हुण सीधा तुहाकू जिहड़ा है प्रमोद चोपड़ा जी की आवाज़ नाल ही जोड़ना चाहना हाँ कि वो आवन अपने गीत दे नाल इस प्रोग्राम को शुरुआत करन।
2: डॉक्टर चंद्रशेखर जी हिसार तो उन्हां दा बड़ा धन्यवाद है, ते साडे सुरेश मीणा जी उन्हां दा भी बड़ा धन्यवाद है कि वो साकूं टाइम टाइम ते याद कर जांदे ने। ते सावण दे उत्ते कुछ मैं पेश करेंदा
1: जी स्वागत
2: जो टूटा फूटा है।
1: हाँ जी स्वागत। हाँ जी

0: वाह सही, वाह।
1: चिड़ी दरख्तां ते बैके चिड़ा मने
0: जी,
1: दी।

0: लड़दी हाई भाभी भावे सिफतां बार करें दी हाई, लड़दी हाई भाभी भावे सिफतां बार
1: करें दी
0: करें
1: हाई।
0: दी हाई,

0: भावीवल संगड़ी ढांदे ही भावीवल घ्यू दे नाल
1: क्या
0: अढ़ेंदी
1: बात है, क्या
0: हाई,
1: बात है।
0: घ्यू दे नाल अढ़ेंदी हाई, बहु आशीषां देंदी हाई, नजर न लगे बालां कूं

0: दे गुस्से कु ठड्ढा ठार करें दी हई, ठड्ढा ठार करें दी हई, बहु अशीशा ने दी हई। अवल क्या होता है, साडे सारे गर्म स्वेटर।
1: वाह
0: भाभी क्या है,
1: क्या
0: सर्दियां है
1: बात,
0: क्या क्या, साडे सारे
1: गरम
0: गरम
1: स्वेटर।
0: स्वेटर, भाभी आप बुने दी हई, भाभी आप बुने दी हई। एक अड़ोस पड़ोस दा संस्कार देना, हंसी मखोल दी भी गाल है ते सच्ची गाल भी क्या है। एक पड़ोसन दी भाभी ता, एक पड़ोसन दी भाभी ता, जुआ रोज कढ़े दी हाई, जुआ रोज कढ़े दी हाई। तप चढ़ दे ही तप, आज दे बालों को डास्ट में
1: बुखार आ
0: बुखार,
1: गया।
0: बुखार थी में दे जी को आदन फीवर,
1: हाँ
0: कि तप

0: साकू वड्डी द्राख खवेंदी हाई, बहु आशीषां देंदी हाई, वड्डी द्राख खवेंदी हाई, लाला जी दे सिर ते अक्सर भाभी तेल मलेंदी हाई, बहु आशीषां देंदी हाई। वल क्या है मियां दे, तू सावण दी गल कीती है, वल सावण छोंदा क्या है कि बारिश को आदन मी कि मियां देही भाभी खिचे पकोड़े गरम तलेंदी हाई,
1: वाह
0: पकोड़े गरम तलेंदी हाई, डई रिड़क

मंदर उते मथे बहु टिकेंदी हाई, मथे बहु टिकेंदी हाई। वाल क्या है, लाला जी कुट दे हन साकू। कोई गलती कर रहा होता है, लाला जी बहु झाड़ पिटे ना जूते चा के। वाल क्या दी दे, भाभी क्या कर दी है, माँ क्या कर दी है, लाला जी कुट दे हन साकू। भाभी

0: शुक्रिया,
1: क्या
0: मेहरबानी,
1: बात है, क्या
0: आओ
1: बात
0: तो
1: है
0: अकुवाल मैं जिड़ा है। ये मैं बहुत
1: डॉक्टर
0: लंबी
1: साहब,
0: गजल है,
1: कमाल की
0: मैं
1: चीज है।
0: चाहवा तो शायद आधा घंटा भी इस गजल को पढ़ सकता, क्योंकि टाइम दी
1: टाइम
0: मजबूरी है, ये
1: दिक्कत
0: प्रोग्राम है, ते
1: ना।
0: आओ वाल तो अकुम मैं प्रमोद चोपड़ा जी दे मिठड़े गावण वाल दोबारा ले चला।
1: वाह जी,
0: स्वागत है प्रमोद चोपड़ा।
1: मैं जिहड़ा हुण तुहानूं सुणांदा पिया, टप्पे
0: जी, इरशाद
1: मुल्तानी टप्पे तुसां सुणिओ सन, ते सावण दे उत्ते मैं टप्पे कुझ बणाए न,
0: जी, स्वागत।
1: ते अर्ज़ करांदा पिया।

0: जो आ ढोल दूर क्यों खड़े
1: जी
0: भाई, ऐसा
1: जी
0: कट्ठे दाने है
1: जी
0: भाई, मी वरसदा वे ते क्या मशूक आशिक को कहती भाई है
1: जी जी
0: सा

0: वाह।
1: आ ढोला रल भेजो खड़ा दूर तू ना
0: ना तरसा।
1: तरसा। अग्रवाल प्रकृति दी गाले, सावण दे बहारा हिन
0: जी जी

0: जी सर जी
1: अगे ये साढ़े वास्ते साल बाद आंदे
0: जी
1: सावन दे वाल मेहमान आली घर चला भी बहन दे
0: जी
1: खुशियां गिना दे वाल थोड़ी उदासी भी दे बहन
0: ना
1: दे बहन
0: वंजे ना तो आवे आसी
1: आ
0: किवे।
1: आवाज मंजना पौंदे
0: हाँ
1: मजबूरी है।
0: हाँ
1: ते उस तो पहले ही सावन तो आने तो पहले ही क्या थींदे
0: जी सर
1: कोठे ते कां बोले
0: जी सर
1: मेहमाना कुछ लेंदे कां
0: जी जी
1: ते इतना भी सावन दे वास्ते भी साढ़े कोठे ते मानदा जरूर है कोठे ते कां बोले बाद साल सावन ही साडा हे मेहमान होवे बाद साल सावन साडा मेहमान हेवे।
0: वाह सही वाह, तुसा बहु ठाडा ठार कर दिते वला वला। ते आओ क्योंकि आज ये प्रोग्राम जड़ा है सिराए की बोली वास्ते, ते मेरा जी पिया करेंदा कि कोई चीज़ रब दी बनाई हुई कदाई जाया थी दी नहीं, घट थी सकती है। मैं इस उम्मीद नाल एक तुहाडे सामने अपनी एक रचना रखे ना, हुंदे च गल ही सिर्फ इहो है कि सिराए की नवे बाल किवें सीखन, है क्लास है छोटी जी सिराए की दी, आओ तुहाडे सामने पेश
1: वाह
0: कर। कि मेरा जीव भी आकर रहता है तो आपको सारियां को हंसावा, तो 2 मिनट सिराई की सिखावा।
1: वाह
0: मेरा जीव भी आकर रहता है तो आपको सारियां को हंसावा, तो हंसी हंसी है 2 मिनट सिराई की सिखावा। ये जो तुहाडे प्यारे प्यारे चिल्ड्रन हैं इन्हां को आदन बाल, ते ये जो तुहाडे सिर ते हेयर यानी केश हैं इन्हां को आदन वाल,
1: वाह
0: ते सुनो बालो टूथ को आदन दंत, ते पेट ठीक रखेंदी है गुलकंद।
1: क्या
0: सुनो
1: बात
0: बालो टूथ को आदन दंद, ते पेट ठीक रखेंदी है गुलकंद। इस हैंड को आदन हाथ, ते लेग को आदन लत।
1: लत
0: इस हैंड को आदन हाथ, ते लेग को आदन लत। तुसा खांदे हो मैगी, असा खांदे आसे भात। तुसा खांदे हो मैगी, असा खांदे आसे भात। मुल्तानी चादन वधिया, जी को हिंदी चादन अच्छा।
1: वाह।
0: मुल्तानी

0: आदन वधिया जी को हिंदी आदन अच्छा चिट्ठी यानी तोड़ा लेटर ते बहन जी हुण कौन उणदा सिलाइयां ते स्वेटर। मेडिसिन दा मतलब गुट्टी यानी दवाई, बिरा यानी ब्रदर, दी वाइफ यानी त्रिमत। चोपड़ा जी बहुत शानदार तुसा आज टप्पे गावन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है। दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की

0: विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि यह तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसिन जाता है, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने को कहा ताकि घुसपैठ, तस्करी, अतिक्रमण

0: आरोपण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
1: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। और RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा ये जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 144447 पर संपर्क कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है।

0: कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरुआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाएगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घणघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी रखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवन रो काम 4 जून नु शुरू भेला। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरबे समाचार विगतवार। राज्य रा घणखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर माए सब बत्तो 48.2 डिग्री

0: सेल्सियस तापमान नापी चो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माई अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोणा कम से कम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि भगती जोरदार गर्मी रही। इन बीचे प्रशासन री ओरू गर्मी रो सामोकरण सारू जरूरी इंतजाम करया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सगला महकमा न तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराऊ जिंदगी माथ घणो असर पड़ रियो है। माणा झुंझुनू खबर नवीस बतायो के जोरदार तावड़ाऊ दिन री भगत बाजारा माए लोगा री आवन जावन कम वेगी है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: इन बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ती गर्मी और लू रा असर न ध्यान रखता थका जनताओं सावचेती राखण रियरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवन रे दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वे बच्चा, बुजुर्गा और मंदा लोगा रो खास ध्यान राखण और जोरदार तावड़ा री बगत कठे नी जावन सारूई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारूए दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज कीनी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजन सारू चेतायो है। इसागई कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारूई चेताई चियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टा री विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो कि SIR रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावण हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लारला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए SIR करावण री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका वो फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी SIR ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची VVPAT उन जुड़िया दिशा निर्देशा माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो कि इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगा पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। राज्यपाल कहो के कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करण कई हलका माए कामयाबी मिल सके है। इ मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के जनता ने न्याय दिरावण सारू जूना कानून बदल और 3 नुआ कानून लाई चिया। कार्यक्रम माए 9 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजी चिया, जबकि 25,000 बत्ता विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां तीरी ची। करौली जिला माए लारला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावण सारू न्यारी न्यारी कोशिशा करी ची है। जिला री मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावण पानी बचावण रा काम ने मजबूती मिली है। काम वाला रो कहणो है कि केंद्र सरकार री पहलू हलका माए बिरखा रो पानी भेड़ो वेवण जमी हेठे पानी रो लेवल ही ऊंचो आ रियो है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसी जाता है, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज

0: सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ने जारी रखन री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रुपया रखी गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन योजनाओं राज्यों री एजेंसियां ने एक उन दूजा राज्य माई अनाज लावण ले जावण माई मदद मिलेला।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथा हिफाजत रा और पुख्ता इंतजाम करण सारू काल बीकानेर माए सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग माए सरहद कनेरा हर जिला सारू चार ही मेर निजर राखण वालो सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सरहद 15 किलोमीटर ताई रा हलका माए गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुकम दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण माथे जोर दीनो। गृहमंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार वहवण वाला अपराधा माथे रोक लगावण सारू बीएसएफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रातेत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करती नी है। इनमाए राज्य सेवा वारा 192 और अधीनस्थ सेवा वारा 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो कि आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीकाओं अर्जियां 4 जून 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। ई परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी नए जारी करतियो चियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर माए बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इन दौरान मोटी तादाद माए अमानक बीज जब्त करी जिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जिया बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट GOT करायो जावेला।
2: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रातेत आज गौशालावां ढंडारा अस्पतालां और दूध उत्पादक संघा में खास अभियान चलाई चियो। इन दौरान पानी पर्यावरण और गायां ने बचावण जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा गौशालावां में पौधा रोपया और परिंदा सारू परिंडा बांधिया। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलुम्बर माई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला माए साता देवण उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखण रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत 3 दोषियों री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो कि निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा माए कोई बदलाव नहीं करियो चावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रातेत मिलर यौन दुराचार करण यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी करती नो। आईपीएल क्रिकेट होड माए आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीचे एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ माए सरू फेवन वाला ही मुकाबला माए जीतन वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला माए गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद माए खेलो जावेला। इनु पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स ने 92 रन हरार फाइनल में पूग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित

0: क्रियाजवण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माँ 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश रा घनखर हल्का माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टां रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामलानी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। RPSC RAS रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकाऊ अर्जियां देवण रो काम 4 जून नु शुरू भेला। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। किसान वाइसों ने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: नवीन भाई राम राम।
1: राम राम सुनील भाई जी। देखो अपना साग आज फिर कौन है? श्रीपाल भाई जी
0: बिल्कुल
1: आए
0: श्रीपाल भाई जी, आज मुंडा सो मार गए या पोतिया पुतिया बंद एडा यार, के बात है आज तो।
1: देखो देसी आदमी है जी, देसी आदमी।
2: सुनील भाई, नवीन भाई, सगला ने राम राम।
0: बिल्कुल
2: काल की है के बातचीत करी चोखी लागी चौपाल गए माँ, तो
1: हाँ
2: बडेरा आदमी है नवीन भाई, अच्छी जानकारी बताई। तो आज जी कर गयो मैं क्यों चालना सा के कई देर हथाई करी आवांगा चौपाल में।
0: बिल्कुल हताई जरूर कर से, और आपने जिका सुनने वाला है बने घने घनी यार, मोकली मोकली राम राम।
1: सुनील भाई जी एक बात तो है, देखो ढलती उम्र में के आदमी ने पहचान में दिक्कत होना जाए, अब आने में बडेरो लागू। देखो यार
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ तो कमी तो है भाई जी।
0: ए लको है तो
1: अच्छा,
0: आप
1: चश्मा कौन लेगा आज?
2: देखो बात उम्र की कोनी, वह बात हुए तजुर्बे की, ज्ञान की। तो थे तो ज्ञान का भंडार हो अथा खजानो है थारे कने।
1: तो आज के कार्यक्रम के है?
0: कार्यक्रम आज है, देखो नी कागज यहाँ ढेर लाग रहे सब पूरो, तो
1: ओ,
0: आंगा जवाब देना है, उथला दे आंगा आज आंगा।
1: मैसेज देखो कितना है,
0: खूब आ रहे है, खूब आ रहे है।
1: तो पढ़ो फिर शुरू करो, पहले मैसेज पढ़ दो।
0: कई नवीन भाई है, देखो है नाम नाम ही लिखा है, बात नहीं कौन करे
1: ने आंगा कौन पढ़ा पाच
0: अन क्यों थे बात है। फिर
1: देखो भाई बात लिखो, कोई चौपाल की अच्छी लिखो माड़ी लिखो, लेकिन बात लिखो, चौपाल के बारे में बताओ, कोई सुझाव है वो दो। पण थाना अगर गाना ही फरमाइश करनी है तो वो कार्यक्रम भी वास्ते तो कौन है?
0: बिल्कुल
1: है?
2: तो सुनील भाई देखो बातड़ी भी लिखेड़ी है, वो जो कि आप उनके पहलो कागज आए हुए ए लिखे के कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ सबसे पहला पत्रोत्तर पेश करता जी ने मारी तरफ से मोकली सारी रामा श्यामा। कबूल करो सा चौपाल में नियमित श्रोता, एर सारा ही प्रोग्राम में सुना, मंगलवार ने गोरबंद सुनियो वो भी अच्छो लाग्यो, बिंग सागे सागे गीतारो गजरो नाटक बाजार भाव ए जगह कार्यक्रम है, ऐ मन बहुत ही चोखा लागे। लिखने वाला है चक 15 पी एस यू सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल जोशन, एर वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन, चक 78 एल एन पी से डॉक्टर विचित्र सिंह, आंग सागे आंगो पोतो है अरविंदर सिंह।
1: देखो श्रीपाल जी कितनी दूर हुआ अपने कने मैसेज आवे, ऑस्ट्रेलिया हूँ कनाडा से हूँ, अरे बड़े तो ठंड हो सी आपने तो लू चाले।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: कठे कठे बर्फ भी पड़े है, बटे बता का बर्फ पड़े है नी,
1: थोड़ी सी बर्फ हटा भी आ जाए तो मजा से आ जाए। देखो ए नी ए अपना हर कार्यक्रम में लिखा करे, मैं देखूं हर बार पढ़ू हूँ, पत्र तो आवे ही आवे। श्रीपाल जी थे पढ़े को नहीं थारो भी नाम लिख रखे
2: है
1: जी, गोरबंद आना चोखो लागो, पर गोरबंद को हटाने नहीं लिखना चाहिए।
2: हाँ क्योंकि सारे कार्यक्रम की चौपाल की।

0: पालगो जो पालगो लिखो की और बताओ माना क्या करना चाहिए भी तो बताओ।
1: बिल्कुल नवीन भाई, और आपने कहने देखो अगलो संदेश भी पुगतो हो गांव घमंडी है सुरतगढ़ छू, और संदेश भेजो है जगदीश ढुकिया, परमिला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, इवा धारणिया, लिखे है कि सगला ने रामा श्यामा और पेश करने वाला भी रामा श्यामा, और सागे सागे लिखे है कि जगह लोक भजन और लोकगीत है वह घना ही दया आवे, और तीन आवाज में चौपाल जी को पेश करो न्यो हिहुड़े सु दया आवे, और सागे लिखे है कि ब्याह की जिकी रिवाज है मत है तीनों भयारी बतल जी की वह बहुत ही दया आई। तो बिल्कुल सा, और ऐसा के साथ मांडियो कि सोमवार ने रामेश भाई जी को चौपाल पेश करियो, मारो अंदाज बहुत ही निरालो है, खेती की बात और लोक भजन घना ही दाव है, और शुक्रवार ने गीता रे गजरा में लोक भजन और गीत सुनगे और मन जी को राजी हो जाए, और मारो मेल थे शामिल करियो तो वो घणो ही आने अच्छो लगे।
0: देखो ये तो पक्का श्रोता, क्योंकि काल तो मैं ही बात करी है, क्यों श्रीपाल भाई जी?
2: बिल्कुल,
0: पूरा सुना आपने मतलब कार्यक्रम में, तो बहुत ही बढ़िया बात है जी की लिखी है, और आप बढ़िया करता रहे आगे पढ़ो सर।
1: बिल्कुल, और आगलो हनुमानगढ़ टाउन शू संदेश पुगतो करियो है रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और इरफान खान, सगला ने रामा श्यामा देवे है, और सागे सागे लिखे है कि कार्यक्रम जिको है मैं लगोलग सुना हाँ, और सागे सागे गीता गजरंग माँ जी का भी लोक भजन है गीत है वह सुनन ने मिले, और मौसम को हाल है बाजार भाव है वह जानकारी भी अच्छी लगे। हाँ लिखियो तो देखो अंग्रेजी का माँ है, पर मनिया लगे हिंदी में या राजस्थानी में लिखता तो और अच्छो लागत तो नहीं।
0: वासा देखो थे देखो कितना मतलब बढ़िया आदमी होते हैं, नहीं हाथों आतियाँ चेंज कर ली है बदल दी ऐसा बढ़िया बात है, तो ये लिखता रहो सा। और आगे श्रीपाल जी कोई मेल भी आईडी है क्या अपने?
2: हाँ मेल भी शामिल कर सा, वो एक जो है संदेश वो मैं था लिखने वाला है बीरमगांव गुजरात से हूँ। अच्छा। अजीत कुमार भावसार लिखे के पत्रोत्तर कार्यक्रम जो है वो मैंने बहुत ही अच्छा लगे, एर कार्यक्रम जगह में लगो लग सुना इति बात है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी, बात तो ठीक है पत्र पर पढ़ रहे हैं, पर कार्यक्रम में सारों पल्ला कोई भजन चलाना है जिकी भी जिम्मेदारी बाकी है
2: मन ठा हो गीत भजन की फरमाइश कर सो तो मैं तैयार कर रखे देखो
0: चला दो
2: सुनो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीजबायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल 94144-67186।
3: बिल्कुल नवीन भाई, आप श्रोता ने सुनो भजन और अब अगलो संदेश अपने कने पुगतो हुए है नोर जिला हनुमानगढ़ छू और मंडे है नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार। लिखे कि सूरतगढ़ केंद्र छू जी का प्रोग्राम प्रसारित हो है चौपाल और बाकी जी का राजस्थानी भाषा का जितना भी कार्यक्रम है बेमाने बहुत ही पसंद आवे और सागे सागे ज्ञानवर्धक जानकारी छू भरपूर होवे और आकाशवाणी का 90 वर्ष पूरा होने पर जिको कार्यक्रम करवायो तो भी मैं ओल मत दियो है कि भाई मन थे बुलायो को नहीं कह
4: ओल मत तो आप देखो श्रीमत है हैं
3: बिल्कुल
4: सर। और तो के कहा अरे जी की थे कार्यक्रम सुना करो बढ़िया लगे और आपा ओल मत जी को है नहीं वो उतार भी देशा
3: बिल्कुल सर
4: आगे मौको मिलने दो हैं
3: बिल्कुल सर। तो बिल्कुल नरेंद्र जी देखो नवीन भाई कह भी थारो ओल मत जी को है जरूर उतार देशा तो बिल्कुल थे कार्यक्रम सुनता रहो और ये जी कह संदेश जी कह भी पूछता करता रहो। अगलो संदेश गांव आरायण छू और मांडो है बनवारी लाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल। लिखे है कि 21 ने जिको भैंस और गाय पर जिकी जानकारी दी वह अच्छी लगी, 22 ने बकरी पालन एक व्यवसाय और 26 ने पानी बचाव रात्रि का खेत में डिग्गी बनाने री विधि और बटाऊ नाटक जिको मैंने जरूर सुनवाई हो सा और यह कार्यक्रम है जिले के अभी माने जिका

0: बहुत ही अच्छा लगा।
1: बटाऊ नाटक आना अगली बार सुना दें फिर है।
0: बिल्कुल जरूर सुना सा, बिल्कुल जरूर सुनावांगा ने। और झोरड़ ढाणी गांव बहलोल नगर शू नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़ और आरवी झोरड़ लिखे कि कार्यक्रम जी को है मैं लोगों लग सुना हाँ और खेती से संबंधित जी की जानकारी है, राजस्थानी लोकगीत है, गीतारो गजरो है, मौसम की जानकारी है और सागे सागे जी का बाजार भाव है। ऐ सगला माने एक चौपाल रूपी माला का मोतिया और माने आ माला जी की बहुत ही पसंद आवे और सागे सागे धन्यवाद भी दी गया।
1: देखो सुनील भाई जी, और जो माला है नी मैं सागे श्रोता भी है, माला में अपना जी का मोती है नी, ये श्रोता भी मोती है,
2: कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाला है सगले भाइया ने मोकली मोकली रामा श्यामा। जब दो जना पेश करो तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छो लगे।
1: आज तो तीन हाँ
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद साथ लिखियो है
2: लिखे तो आगे कि पर आज तीन जना पेश करो नी, जब प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगे और माने पूरा यकीन है कि आज पहली बारी तीन जना रो प्रोग्राम सुन सा।
1: काल भी कर दियो मैं तो तीन को पहला भी कर दियो
2: हाँ,
1: तीन बार
2: कई बार मैं सुनी करूं,
1: मैं तो सुजू श्रीपाल जी अब कल चार कद कर सा
2: वहाँ, क्योंकि चौपाल को तो मतलब ही ओ हो गया कि आपसी हताई बतल एर बाता चीता जेका हुआ बेड़ा बैठ गए एर जेकी हताई करा भाई चौपाल हुए
1: भाई चौपाल है
0: वो बिल्कुल आनीचा लिखे भी है कि कदे कदे मिस हो जाए तो पहला तीन जना लो नहीं बोया मिस कर
2: हाँ।
0: दियो अच्छी तरह बतावे को नहीं उड़े सी छोटो से लिख दियो नीचे के मिस हो जाए
1: मिस चालो को नहीं अब कड़ाई थे।
0: तो अमरगढ़ सादुल शहर से मांडे है कुलवंत मान लखविंदर कौर मान लिखे कि कार्यक्रम जो का माना बहुत ही अच्छा लगे और कार्यक्रम जो को गीतारो गजरो है वो भी अच्छा लगे, खेती बाड़ी संबंधी जानकारी है वह बहुत ही अच्छी लगे। तो संदेश अपन भेजो रहा जानकारियाँ जी की है आप जिकिया ने देवा विपूर्ति करा
1: काम है जानकारी देने को मैं तो अभी कहाँ कि भाई जिकी जानकारी है नी मैं पैसे अमल भी कराया करो जी। आप मान लो लू चालन लाग रही है तो बारह कम निकलो, अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज के सोशल मीडिया पर आज की है संदेश दियो लोगों ने कि इतनी गर्मी में कम बाहर जाओ। अरे एक बात और लिखी है भी, आपका जी का बुजुर्ग है दादा दादी नाना नानी बांगो हाल पूछता रहो फोन पे
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: बाहर ना निकलो
2: बिल्कुल बिल्कुल। ई संबंध में आज जी आपने खबर में बातड़ी सुनी आप मौसम विभाग जो है वो आपने बतायो कि भाई जो गंगानगर हो जो आज सगड़ों गर्म हो एर कल भी की है पर बात लू चालने की संभावना है आपने तो बचाव रखनो जरूरी है
0: जरूरी बिल्कुल सा। सिरपाल भाई जी वो देखो चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा संदेश आपको भेज दिए है, सगला ने नमस्कार और अभिनंदन करे है और सागे सागे मंडे है कि कार्यक्रम जिको है चौपाल में बहुत ही शिद्दत से सुना और श्रोता जिको है वो बहुत ही मनोरंजन हुए इसू और विशेष करे लिखे है कि किसाना ने वो बहुत लाभ हुए और जिका प्रस्तुत करता है बांगी जी की मीठी वाणी है और निष्ठ है बीस वो कार्यक्रम जिको है चरम सीमा पर और स्नेह इतने बने रहना चाहिए।
1: बात है कि चौपाल जी को है नी मैं वो काम हुई है कि आप जानकारी दे रखा और खास कर किसाना वास्ते
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल
2: है। ओ आगलो जी को आपने कने संदेश पूछो है लिखे के कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाला ने मोकली सारी रामा श्यामा एर आई सागनी बात के मान कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगे, दो जना जब पेश करो तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगे।
0: बिल्कुल आज तो तीन जना करा दे
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब तो अगर दो अच्छो लगे तो तीनों ज्यादा अच्छो लगे
2: ज्यादा अच्छो लगे
0: बिल्कुल।
2: लिखण वाला है आकाशवाणी रेडियो श्रोता संघ राय सिंह नगर से समाज सेवी सुनील डाल सोन डाल जी जांगिड़ परवीन जी सरावगी नरसी जी एर चेतन राम जी जोशन जी वेद प्रकाश जी मिट्टा धनराज जी बांबू एर आंगा बेली साथी।
0: तो श्रीपाल भेजियो एक आपने कने कागज भी आईडा है मंडी गोलू वालों ब्रजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। देखो आम बातरी तो मैं बाद में पढ़ एक बात बताऊं आंगो कागज लगो लग पुगतो
1: अच्छा
0: हाँ बिल्कुल शुक्रवार नहीं आवे बुधवार नहीं लोगो लग कागज आवे।
1: देखो डिजाइन भी तो सुनो
0: बिल्कुल कठे लाल अक्षर है कठे काला अक्षर है कठे नीला अक्षर है बातरी भी खूब मांडा
1: है चौपाल में। देखो खेती की बात हो
0: बिल्कुल बिल्कुल मांडे है कि पहली तो सगला ने मोकली मोकली रामा श्यामा और सागे सागे मांडे है कि चौपाल जी को बहुत ही दाया हुआ गीत भजन नाटक बहुत ही दाया हुआ अच्छा लगे और खेती बाड़ी की जी की बातें है बाजार है मंडी का भाव है मौसम की जानकारी अंगो में खूब लाभ उठावा और जितनी भी और जी की जानकारी दो अंगों में ज्यादा लाभ उठावा
1: थारा वास्तविक कार्यक्रम में तो लाभ उठाया।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल नवीन भाई श्रीपाल भाई आपा सुनायो अपने श्रोताओं ने गीत
3: गीत तो प्यारो गीतो प्यारो भाई साहब मिठो मिठो गीत हो एकदम
2: और मीठा मीठा लिखड़ा कागतिया भी देखो आ रहा है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर शू सोलाल दादा कागत आगे देखो
3: जे थे वो नहीं बांचता नहीं
2: बिल्कुल
3: है? तो गड़बड़ी मामला
2: नहीं बिल्कुल बांचा क्यों ना सोलाल दादा को देखो कागत लगो लग आवे और खूब सारा आवे तो सोलाल बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित हेमंत और अंजू बेनीवाल
3: ओ एक नाम पेन और बाकी मोर हुई क्यों
2: ए भी आ मोर पहला की बनाईडी है दादे की
3: अच्छा
2: ए जिका मेंबर अंजू बेनीवाल ए अब शामिल हुए है परिवार में तो आ मोर चल है पुरानी है तो बहुत पुरानी मोर है दादे की
3: दादा नई मोर बनवा लो अब
2: बिल्कुल नवीन भाई क्यों है दादा भी थे नई मोर बनवा गए सगड़ा नाम मोर वाला ही चलन दो
3: आगे पड़ो एक और आयो देखो
2: ओ देखो आयो है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन छू और मांडो है जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायर आंगो सगड़ो परिवार
3: बस आप पूरा परिवार ने धन्यवाद थे माने पत्र जी का भी भेजता रहो श्रीपाल भाई जी डिजिटल मेल पढ़ दे
4: हाँ सुनील भाई जी कागज पढ़न लाग रहे आप मेल पढ़ा मेल अपने तय पहुंचे ऐसा डानी लाल खान छू जावेद खां इमरान खां अरमान खां सीमा बानो विनोद खां मुखराम जी आरिफ खां ईयान खां असद खान अरमान खां लिखे कार्यक्रम चौपाल जो है वो मैंने बहुत ही अच्छा लगे कार्यक्रम मारी जान है एर थे मैंने गीत नाटक सुनाई करो एर ईदगी मुबारकबाद लिखी है सर
3: बस नाटक तो आप देखो सुनावा सुनावा
2: बिल्कुल
3: है और गीत तो फिर गीता के अंदर गीता गजरा में सुनावा और चौपाल में सुनावा और आज भी सुनाने लग रहे हैं देखो
2: है? बिल्कुल सुनाने लग रहा है जी की मुबारकबाद देवे तो अन्य भी मोकली मोकली मुबारक
3: मुबारकबाद
2: घनी घनी सब
3: त्योहार तो देखो सारे जी का मुबारक
2: अच्छा है तो अन्य भी घनी घनी मुबारकबाद है और अगलो जी को अपने कने कागज आयो है वो आयो है चक 58 NP रायसी नगर शो और मांडा है सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी मीनाक्षी हरवंश बनवारी गोपी राम नरेंद्र ललित सुखराम और अंगो सगलो जिको परिवार है और कागत देखो नवीन भाई आगू ले रू पूरो भर रखे फुल ईसा कागत आवे नहीं जदिया
3: एकदम जी लगा के लिखे
2: जी लगा के लिखे तो लिखे है कि जिको नाटक ले रहा थे सुनाया वे बहुत ही अच्छा रोचक और ज्ञानवर्धक का और सागे सागे लिखे कि वहाँ नाटक अंग माँ अंधविश्वास पर भी कटाक्ष हो
3: तो बात तो देखो जिको नाटक हुआ नहीं सुनील भाई
2: बिल्कुल
3: जो काम

0: वही है कि जिकी कुरीतियाँ चल रही है, कोई अंधविश्वास चल रहा है, बेपापा कटाक्ष करा ताकि आम आदमी ये भाषा ने समझे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है नहीं?
2: बिल्कुल। और सागे सागे और भी बातरी मांडे है, लिखा है कि कार्यक्रम जिका बाकी का कार्यक्रम है वे भी अच्छा लगा, और खेती से संबंधी जिका कार्यक्रम है अंगमा जी की जानकारी है वह मैंने बहुत ही अच्छी लगे है।
0: बात तो सही है। देखो एक मेरे कने भी आए हुए, वो बेलोल नगर आए हुए।
2: बिल्कुल
0: ये लिखे है कि ये तो अपना अरे ये तो स्टाफ का है।
1: अच्छा।
0: लिखनो तो नीचे पर आगे बात जिकी बा मैं पहुंचा दू श्रोता ताई।
1: स्टाफ वाला कौन है? नरेश वर्मा जी।
0: नरेश जी है बेलोल नगर। एक है कि भाई जी मैं तो ग्रुप में इतनी बार बांट दियो कि फरमाइश ना भेजो, चौपाल में प्रतिक्रिया लिखो, गीता की फरमाइश ना करो, कई तो शहर हूँ इस तरह का गाना मांगण आ रहा है, तो चौपाल में हिंदी गाना की फरमाइश थे करो। तो आपनो जिको उद्देश्य है नहीं ग्रुप को वो है खासकर पत्रोत्तर को कि जिको चौपाल कार्यक्रम थे सुनवे बिंग बार में थे प्रतिक्रिया लिखो, जिकी चीज थे सुननी चाहो बा लिखो, जिकी अच्छी लागी बा लिखो, जिकी माड़ी लागी बा लिखो,
1: बा लिखो।
0: और मारा नरेश भाई जी ने परेशान ना करो,
1: परेशान करो। उधर की बात अड़ी अब जी आ लिखी है वो मेल अपने ताई पूछो है
0: पड़ो पड़ो
1: अरे पूरो टिका के लिखो है
0: आन दो
1: नाराजगी जताई है
0: नाराजगी के फिर तो बहुत बढ़िया।
1: श्रोता जी का आपने कार्यक्रम जुड़े डायर हर कार्यक्रम आपनो सुने सूरतगढ़ को दिल लगा गए सादुल शहर छू राम कुमार रेवा।
0: अच्छा राम कुमार जी ए तो मैं बताऊं कि थाने फेसबुक पर अपना हर एक जिको पोस्ट हुए नी बिपांगो कमेंट जरूर आवे।
1: बिल्कुल है। तो ये पूरा प्रोग्राम जुड़े रहे। देखो आप गो आदमी है नी आपने आकाशवाणी का जिका श्रोता है तो भाई आपका ही है सारा
0: सारा अपने
1: नाराजगी भी आनी
0: चाहिए। नाराजगी की आवाज सुनाओ
1: के पत्रोत्तर जिको पत्रोत्तर कार्यक्रम है चौपाल के वहां वो मेरे लाइव सुन लाग रहा है। श्रीपाल जी ने, नवीन जी ने, सिसोदिया जी ने, सुनील भाई जी ने, सगड़ा ने रामा श्यामा लिखिया लिखे है कि मैं प्रतिक्रिया कौन भेजा।
0: अच्छा
1: हाँ प्रतिक्रिया कौन भेजा क्योंकि 48 डिग्री जो तापमान जो चलन लग रहा है नौ तपा चल रही जना डर लगे लेकिन आगे हाँ लिखो है कि भाई जो कार्यक्रम हो आकाशवाणी का जो 90 साल का उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखो वो कार्यक्रम चौखो लगे पर मैं भी हूँ वंचित रह गया।
0: देखो आ श्रोताओं की जिकी शिकायत है नहीं बात जायज है मैं मानू पण के की जिकी नियमा की भी थोड़ी सी के दिक्कत हो
1: बिल्कुल चीजें
0: हैं आप है नहीं आगे आगे जी की शिकायत है नहीं मैं पूरी कर चाहते।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखो राम कुमार जी आपस में जुड़े रहा कोई कार्यक्रम में नहीं पहुंचा तो कोई नहीं अब कह देखो कार्यक्रम क्योंकि आते मत सोचो कि श्रोता जी का है वे आकाशवाणी उबाने दूर कर दियो श्रोता है नहीं तो ही आकाशवाणी है एक दूसरे जुड़े रहा
0: आकाशवाणी है तो श्रोता है श्रोता है तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल। श्रीपाल भाई जी देखो ओल मत अपन पहले ही देर थे मन लगे करोड़ ले सो एक नाम थे छोड़ दियो मन लगे मैं पढ़े करूं
1: नहीं नहीं तो वो चंद्रकला जी को नाम आज लिखो को नहीं ए तो गुस्से में तो
2: अच्छा
1: लोग गुस्सो चंद्रकला जी पर उतारे नाम कौन लिखो
0: तो एक कागज पढ़ दो फिर
2: तो कागज आयो है नई आबादी अबोर पंजाब छू और मांडियो है डिम्पल सोनी संतोष सोनी राखी सोनी कोमल सोनी सिद्धि सोनी और सागे नीचे देखो नाम तो कौन लिख दिया नीचे लिख दियो सासू बहू ननंदर भाभी ए देखो का आ नई चीज आज देखो अपन देखने मिली
1: बिल्कुल
2: अरे सागे सगला ने कह भी प्रस्तुत करने वाला ना सुनने वाला घनी घनी रामा श्यामा और सागे सागे मांडे है कि जिका लोक गीत भजन है वे माने बहुत ही अच्छा लगे सुनाओ
0: तो देखो लोकगीत है भजन है ये सुनाने वास्ते आप चौपाल जी को कार्यक्रम है और मैं तो फिर एक सुनाई दियो
1: बिल्कुल
2: एक गीत सुना दो
1: सुनो
0: वासा

0: रुपया। और जहत सर मंडी की बात करा तो नवीन भाई सरसों का जगह भाव है वे 7011 सुन ले गए और 7288 रुपया तय रहा। और गेहूँ बिक्यो 2409 रुपये 2660 रुपया। और ग्वार का जिका भाव है वे 5451 और उनचैम जिका बिक्या वह 5620 रुपया। रायसी नगर मंडी का भाव भी पुगता हुआ है, गेहूँ का भाव 2350 2650, चिणा का भाव उगड़िया 5370 और उनचा में 5650 रुपया, ग्वार का भाव रहा 5600 रुपया और जो बिक्या 2110 रुपयों ले गए और 2193 रुपया, और अरंड का भाव रहा 6225 रुपया और सरसों बिकी 6973 रुपया। और श्रीपाल भाई गंगानगर मंडी का भाव भी पूछता हो गया, गंगानगर मंडी में सरसों का भाव रहा 6200 ले गए और 7455 रुपया, जौ का भाव 2231 2257 रुपया, चिणा बिक्या 5211 रुपया और ऊंचा में जिकी ढेरी की बोली लागी बा 5540 रुपया, और गेहूं 2415 2735 रुपया, ग्वार का भाव रहा 5235 और ऊंचा में 5390 रुपया, और मूंग बिक्या 5800 ले गए और 6100 रुपया ताई, और जोई बिकी 3580 रुपया।
1: एक बात तो है,
0: बताओ
1: पड्या तो तेसा बड़ी है
0: बिल्कुल,
1: पर मने यहाँ लगे कि एक बार में एक मंडी का पड्या करो
2: सुनील जांगिड़ सागे है धनराज जी बंबू साहब राम जी स्वामी ए लिखे के गीता रो गजरो कार्यक्रम में जगद चौपाल में सुनानी तो मन बहुत ही अच्छो लगे एर सुनील भाई जी ने आराम श्यामा लिखी
1: आपने कौन लिखी
2: है? है सुनील भाई जी ने लिखी
1: तो ना पढ़ू मैं तो को?
0: देखो आने भी घनी रामा श्यामा और देखो एक बात और है नवीन भाई ये है भी ए जिक्या ली रामा श्यामा नहीं बा मैं थारते ही पुगती करूं
1: चलो थारे नहीं ले ले सा थोड़ी थोड़ी
2: हां जना
0: बिल्कुल सानी और ए अगली बारी अब थाने जरूर रामा श्यामा लिख सी अगर जे थे ने आया तो फिर ओड़ मुआ जलो वा देख लिया
1: नहीं तो देखो पत्रोत्तर में तो आवे यहां
0: बिल्कुल। तो श्रीपाल भाई अभी यहाँ है कि आपने एक रागणी सुनन को जी कराओ।
2: हाँ, सुना दो, सुना दो। रागणी की सिफारिश तो देखो नवीन भाई जद का करण ही लाग रहे हैं तो सुनावा
1: सुनाओ सा

0: श्रीपाल भाजी आज की रागनी थाने शुरू में चलानी ची
1: चौकी लगी
0: पूरी सुनाई कौन थे तो
1: पूरी देखो समय देखो है नहीं वो कदी रुके को नहीं
0: पर एक बात सुनो मैं सगला ने बता दूं कि मौसम विभाग कह के आना रहा एक दो दिन में कोई आंधी आस के
1: हाँ आंधी भी है लोगो भी कह रहे
0: हैं यहाँ तो नो तो पचाल नहीं ला रहे गर्मी को ध्यान रखो आंधी को बचाव रखो छपर छपर वांग नीचे ना खड़ा हो ठीक है और पशुओं ने भी ध्यान रखो तो अब चला
2: बिल्कुल बिल्कुल सर टेम हो गया है कार्यक्रम को तो अपना श्रोताओं आज्ञा लेवा
0: राम राम सर
1: राम राम
2: राम राम सर राम राम

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में निकाह फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत।

किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका।

नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे।

0: फिर क्या हुआ?
1: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर बेशरम खा गया।
0: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
2: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ

अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि के साथ साथियों की आवाज़ में मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए सुने कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है मुद्दत। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, गाने के मुखड़े से आपने ये तो पहचान ही लिया होगा कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जीने की राह के कुछ गीत।

सुदौ फिल्म जीने की राह सन 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे एलवी प्रसाद, पटकथा और निर्माता भी एलवी प्रसाद थे। संवाद लेखक थे मुखराम शर्मा।

0: श्रोताओ, प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म जीने की राह के सभी गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए। इस फिल्म में मुख्य रूप से भाग लेने वाले कलाकार थे तनुजा, जितेंद्र, अंजलि कदम, संजीव कुमार, मनमोहन कृष्णा, दुर्गा खोटे, बेला बोस, जगदीश, रुपेश कुमार और मीना टी। इस फिल्म में तनुजा ने राधा राय के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। जितेंद्र जो मोहन के रूप में इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार थे। अंजलि कदम ने शोभा की भूमिका निभाई थी और संजीव कुमार डॉक्टर मनोहर के रूप में इस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार थे।
1: फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

श्रोताओ, फिल्म जीने की राह में गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म में गीतों को आवाज़ देने वाले कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र सिंह, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर, हेमलता और लता मंगेशकर। गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के पुरस्कार के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना गया। आनंद बख्शी ने इस फिल्म का महत्वपूर्ण गीत आने से उसके आए बाहर गीत लिखा। इसके लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया। बहरहाल सुनवाते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत के बोल आपने अगर सुने हैं तो दो पार्ट में इस गीत को गाया गया था, और ये बोल जो है दूसरे पार्ट के इस गीत के थे। आमतौर पर इस फिल्म का, फिल्म जीने की राह का वो गीत के, आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, इतना प्रसिद्ध गीत, हिट गीत, और उसी के बोल लगभग हम सुनते रहते हैं। लेकिन इस फिल्म का दूसरा पार्ट ये था। पहला पार्ट, पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे। संक्षेप में हम आपको बता दें कि फिल्म जीने की राह सन 1969 में बनी थी, और इस फिल्म की कहानी संक्षेप में इस प्रकार से थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन यानी जितेंद्र रामनगर लौटता है। उसकी विधवा माँ जानकी, जो दुर्गा खोटे इस जानकी की भूमिका निभा रही थी, और उसकी सौतेली बहन दुर्गा, और उसका पति रामदास यानी रुपेश कुमार, और उनका बेटा साथ में रहते थे। साथ ही एक वयस्क बहन सुधा और दो छोटे भाई और एक और बहन, उसकी अपनी पत्नी शोभा और बेटी गुड्डी भी थी। वह जब अपनी माँ और उसके छोटे भाई बहनों को मजदूरी करते देखता हुआ पाता है, और वो समझता है कि उसका घर भी गिरवी रखा हुआ है, तो वह मुंबई से आया था और वापस फिर से मुंबई चला जाता है, जहाँ पर अपने दोस्त डॉक्टर मनोहर, जिसकी भूमिका निभा रहे थे संजीव कुमार, उनसे मिलता है, और उसके माध्यम से कमल राय मनसुख लाल यानी मनमोहन कृष्णा के साथ काम करता है। वह जब रामनगर में अपने परिवार को पैसा भेजता है, लेकिन दुर्गा यह सब हर बार अपने लिए ही रख लेती है। वह परिवार के बाकी लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। मुंबई में जानकी, शोभा, गुड्डी और मोहन के सभी भाई बहन सड़क पर आ जाते हैं। कई दिनों के बाद उन्हें मोहन का पता चलता है, जो उन्हें मनोहर के घर ले जाता है और वहाँ पर सुनिश्चित करता है कि सभी की देखभाल की जाए। और उसे जब पता चलता है कि दुर्गा, रामदास और उसका बेटा किसी निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो वह उन्हें भी घर ले आता है। परिवार काफ़ी सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली जी रहा था। बाद में पता चलता है कि शोभा का पति दो जीवन जी रहा है, और 2 लाख रुपयों के बदले अपने नियोक्ता की बेटी राधा यानी तनुजा से औपचारिक रूप से सगाई कर लेता है।

स्वतः हम आपको बता दें कि फिल्म जीने की राह में फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार के लिए एलवी प्रसाद को नामित किया गया था। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार को जीता था, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी को इस गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लता मंगेशकर को आप मुझे अच्छे लगने लगे जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला था।

0: सोता हूँ। इस फिल्म में आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हेमलता ने भी एक गीत में आवाज़ दी थी। आखिर में आइए सुनवाते हैं वही गीत।
1: बच्चों, एक समय की बात सुनो, अंधियारी थी रात, सुनो, दीपक चोरी हो गया, चांद कहीं पर खो गया।
2: फिर क्या हुआ?

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीने की राह के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आईपीएल के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया। एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 27 पदकों के साथ भारत ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन किया। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप कल से वियतनाम के दानांग में। और भारत को मिली एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने न सिर्फ कई कीर्तिमान बनाए बल्कि पदकों पर भी निशाना साधा। म्यूनिख में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
1: Oh, Isha, can we get one more? Just one more. Oh, nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लामा मिनचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैम्प दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लामा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया।
2: I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best.
0: अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यू चंडीगढ़, जहां आईपीएल का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 12 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 5 चौके के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल के एक ही सीजन में 59 छक्के का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने कल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की।
3: धर्मशाला में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। हालांकि टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 25 गेंद में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने पड्डिकल को भी अपना शिकार बनाया। पड्डिकल ने 30 रन का अहम योगदान दिया। आरसीबी ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 93 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट झटके। 255 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में गुजरात की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम को 17 के स्कोर पर साई सुदर्शन के रूप में पहला झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन महज 14 रन पर हिट विकेट होकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 2 रन ही बना सके और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन जल्द ही जॉश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज ने 68 रन की

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो

0: साझेदारी करते हुए टाइटंस को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। राहुल ने 4 छक्कों के साथ 68 रन बनाए लेकिन टीम को जिता नहीं सके। गुजरात की पूरी टीम 3 गेंद शेष रहते 162 रन पर ही सिमट गई। आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रजत ने कहा कि हम शुरू से ही मुकाबले को आक्रामक होकर खेलना चाहते थे।
1: इट वाज अ सुपर गेम फॉर अस द वे एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग विद द इंटेंट सो आई थिंक दैट वाज there in every batsman so we had a chat in the meeting and yeah we have to keep a good body language and the attacking mindset the way we played the way we dominated in this game I think that was superb starting I take some few balls 8 to 10 balls to see how the wicket is behaving what the bowler is doing so I try that as many as ball I play and I always like to put bowler under pressure
0: ab ye dekhna dilchasp hoga ki rcb ko khitabi mukable mein kaun si team chunauti pesh karegi vishal sharma sports scan
2: इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का एक और मौका होगा क्योंकि गुजरात 29 मई को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच के विजेता टीम के साथ खेलेगी। अब सीधे रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर जहां एचएस प्रणॉय ने कोर्ट में अपना दमखम दिखाया। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणॉय ने आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी होंगी। एक नज़र आज के खेल प्रदर्शन पर।
3: विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणॉय ने एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी पर 10-21, 21-12, 21-18 से जीत हासिल की। प्रणॉय ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 21-12 से गेम जीता। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 5 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। क्रिस्टी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में यह प्रणॉय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणॉय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लॉ किंग यू से भिड़ेंगे। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी वांग टीएनसी और लिम चियू सियन की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराया। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: बैडमिंटन से चलते हैं रेसलिंग कोर्ट की ओर जहां रेसलिंग में कल भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम वियतनाम के दानांग में हुए अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी है। भारत कुल 27 पदक के साथ पहले, किर्गिस्तान दूसरे जबकि कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
4: भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल में ऐतिहासिक जीत के साथ अपने कॉन्टिनेंटल कैंपेन का शानदार अंत किया। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कैटेगरी में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 9 पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। अक्षय टी ढेरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। इस लय को कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने आगे बढ़ाया। दीपक राठी, पुनीत कुमार और लैकी ने मेहनत से रजत पदक जीतकर टीम की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया जबकि दीपक बेरवाल और मोर सचिन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत के महिला पहलवानों ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। महिला टीम ने शानदार 6 गोल्ड मेडल जीते जिसमें मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री, पुलकित, मानसी और काजल सभी ने अपने अपने टाइटल मुकाबलों में तकनीकी बेहतरी दिखाई। नेहा और स्वीटी ने रजत पदक जीते जबकि अमृता और अहिल्या ने कांस्य पदक के साथ अपना कैंप खत्म किया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारतीय पहलवानों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही 8 मेडल जीतकर एक मजबूत नींव रखी। सुमित 63 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे आगे रहे। सूरज और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। नीरज पटेल, सचिन, रोहित बुरा, रोहित और हरदीप ने कांस्य पदक जीतकर इस शानदार प्रदर्शन में और इजाफा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप उठाना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी कामयाबी है और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर 23 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अब सबकी निगाहें अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर होंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।

0: तीनों स्टाइल में हमारे एथलीटों ने साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब सीधे रेसलिंग से चलते फ्रेंच ओपन की ओर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सेना ने फ्रेंच ओपन टेनिस में शानदार वापसी करते हुए क्लेमेंट टैबोर को हराया। चार बार की चैंपियन इगा स्वैतिक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्वैतिक ने 35वीं रैंकिंग वाली सारा बेजलेक को 6-2 6-3 से हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त पेलिंडा बेचिच ने कैटी मैकनेली को 6-4 6-0 से हराकर अगला दौर में प्रवेश किया।
1: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबोर को 6-1 6-3 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल हैं। इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3 सेट में कुल 40 विनर्स लगाए और उन्हें एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया, जब सिनर ने बेहद आसानी से अपने रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया। पहले उन्होंने बेस लाइन के काफी पीछे से एक फोरहैंड स्क्वैश शॉट लगाया और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार बैकहैंड विनर लगा दिया। रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है और ऐसा करने वाले वह अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस प्रतियोगिता में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें यूकी भांबरी पर होगी, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। जाने माने निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सिंह ने अपने शानदार करियर में 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में उस शख्सियत की बात करने का, जिन्होंने अपने खेल, अपनी सोच और अपनी दमदार आवाज से भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 27 मई 1962 में जन्मे रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में नई ऊंचाइयां दी। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बनकर उन्होंने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
2: That's huge. That is a biggie. It's out of here. This is in the air again. Here's Longo. 3 in a row. It's 4 in a row. 5.
0: Sports Can की ओर से रवि शास्त्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का

0: ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा, कहा यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड

और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का 1 डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का 1 शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही 1 अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra

कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, जेहन ओ दिल में मेरे रात भर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नज़र महके। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवाते हैं नवाज़ देवबंदी की लिखी ये गज़ल।

चरागे इश्क जलाने की रात आई है, किसी को अपना बनाने की रात आई है। कैफ रतलामी की लिखी ये गजल अभी आपने सुनी। आइए अब सुने राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल। ये जो जिंदगी की किताब है, किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम

0: चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो वो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारण से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महा

0: पुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
3: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे।

0: बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी बिल्कुल,
0: विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में 1 साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका, यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हज़ार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा,

0: उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो ये इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से

0: एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the silence, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक डिलीट एंड डिकोड, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं?

0: पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को, घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
1: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली, ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन भावन। आज कार्यक्रम की प्रस्तोता है लक्ष्मी, संयोजक नवीन सिसोदिया।

नमस्कार श्रोताओं, आपकी प्रिय कार्यक्रम हेलो मन भावन में मैं लक्ष्मी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वे बस महसूस की जाती हैं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो खामोशी में भी दिल तक पहुँच जाते हैं। संगीत भी एक ऐसा ही माध्यम है जो बिना कुछ कहे हमारे मन की भावनाओं को छू लेता है। जब भी मधुर संगीत कानों में घुलता है तो यादों के कई रंग हमारे सामने बिखर जाते हैं। कभी बीते हुए सुनहरे पल याद आते हैं तो कभी किसी अपने की मुस्कान। यही तो जादू है संगीत का, जो हर उम्र, हर दिल और हर एहसास को एक खूबसूरत डोर में बांध देता है। तो आइए संगीत की इस प्यारी महफिल में हमारे साथ जुड़ जाइए और आनंद दीजिए कार्यक्रम हेलो मन भावन का।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन।
1: हेलो मन भावन, मैं वीरमगाम से अजीत बासर बोल रहा हूँ।
0: अजीत जी कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, मजा है।
0: कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमारे केंद्र के?
1: कार्यक्रम आपके अच्छे लगते हैं, व्हाट्सएप पर भी हम फरमाइश देते हैं और आज फोनिंग में पहली बार लगाया फोन।
0: अच्छा, पहले आपने कॉल मिलाई है कभी?
1: नहीं, कभी नहीं लगाई अभी तक।
0: अच्छा, पहली बार लगाई है और पहली बार ही मिल गई आपकी कॉल।
1: हाँ, मिल गई फोन।
0: तो वीरम भाई, क्या करते हैं आप?
1: मैं रिटायर हूँ बहन जी,
0: अच्छा, किस जॉब से?
1: एनटीसी मिल में था, टेक्सटाइल मिल में।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम ठीक लग रहे हैं हमारे?
1: हाँ, कार्यक्रम ठीक लग रहे हैं।
0: तो आज इस कार्यक्रम में क्या पसंद है आपकी?
1: विश्वास फिल्म का गाना है बहन जी,
0: कौन सा गीत?
1: आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: हमारे साथ हमारी बहू है हेमलता है, हेतल है, कृष्णा है, बच्चे है, जयमीन है
0: सभी
1: और मेरे दो लड़के हैं।
0: कार्यक्रम सभी सुनते हैं,
1: हाँ जी, सभी सुनते हैं हम।
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज भाई कैसे हैं?
1: हम अच्छे और आप लोग सब अच्छे हो गए, यही मैं अपना।
0: जी बिल्कुल, आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। तो धीरज भाई क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। 17 साल से लेकर आप 57 साल तक आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। पहले
0: अभी कैसे लग रहे हैं इस केंद्र के कार्यक्रम में? सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है आपको?
1: मेरे को ये गाने, आप पंजाबी में गाने बजाते हैं और हिंदी गाने बजाते हैं, और ये राजस्थान की जो परंपरा है यानी उसकी लोक कला है, लोक
0: जी
1: संस्कृति, उसके बारे में कार्यक्रम भी आते हैं और जो मनोरंजन फिल्मी गीत आते हैं वो भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, वहाँ बार बार घूमने का मन करता है। भले कई जगह पर रेगिस्तान है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ हमारा मन को सुकून मिलता है।
0: बिल्कुल, जो राजस्थान की संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी है। तो
1: जी,
0: आज इस कार्यक्रम में क्या पसंद किया है आपने?
1: हमने भी फिल्म का गाना सुना है, शीर्षक गाना है।
0: तो और कौन कौन सुनते हैं आपके साथ कार्यक्रम?
1: हमारा एक ग्रुप है आकाशवाणी फोने, एकता ग्रुप, और गुजरात के भी श्रोता जुड़ते हैं, और वो जो ग्रुप है इसमें भारत भर के श्रोता जुड़े हैं।
0: जी
1: और हम इस समय आकाशवाणी की 90 साल की जो प्रसारण यात्रा का जो यानी सुनहरा यानी अवसर उजड़ रहे हैं, तो हम आकाशवाणी सूरजगढ़ परिवार आपको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक शुभेच्छा देते
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
1: हैं।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन
1: हेलो मन भावन
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं मयंक शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ
0: मयंक
1: जी
0: जी,
1: मैम।
0: कैसे हैं?
1: मैम बहुत अच्छा हूँ।
0: तो इस कार्यक्रम में आपकी कॉल पहले कभी मिलाया है आपने?
1: नहीं मैडम, मिलाए तो ऐप मिला नहीं,
0: जी
1: आज पहली बार मिला।
0: आज पहली बार मिली है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: हाँ जी मैम। मैम आपका प्रोग्राम बहुत मन से सुनता हूँ मैं।
0: बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही हमें सुनते रहें। तो मयंक जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपने चुना है
1: खिलौना जानकर तुम मेरा दिल तोड़ जाते,
0: और आपके साथ कौन कौन सुनते हैं?
1: मेरे साथ मेरे मम्मी जी सुनते हैं, मेरे भाई, मेरे और मेरे मित्रगण, मतलब सभी। मैडम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं, इंतजार रहता है, उत्साह होता है ना वो।
0: जी, बिल्कुल ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। तो
1: हाँ
0: आपको
1: जी मैम।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन,
1: हेलो, मैं हरिराम चौरसिया जिला फाजिलका से बोल रहा हूँ जी।
0: कैसे हैं हरिराम भाई?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम बेकरी का काम करते हैं फाजिलका में
0: तो
1: और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छे
0: कब
1: अच्छे
0: कब से सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम?
1: बहुत दिन से सुन रहा हूँ, 20-22 साल हो गए सर।
0: 20-22 साल से इस केंद्र से जुड़े हुए हैं?
1: अरे बहुत आशिक हूँ इसे कोठन सिटी चैनल का। मैं तो फोन
0: क्या बात, क्या बात
1: ही
0: है।
1: नहीं लगता है, क्या करें, आज लग गया परमात्मा की दया थी।
0: तो कितनी खुशी की बात है हरिराम भाई, देखिए आपका कॉल लग गया आज।
1: जी, और तो मैं फिर श्रोताओं का नाम ले लूँ थोड़ा।
0: जी बिल्कुल
1: हमारे नियमित होते हैं अयोध्या के
0: जी
1: सुभाष चंद्र गोदारा हैं, राम कुमार रेवाड़ हैं और बाकी साथी लोग।
0: जी आपने गीत तो नहीं बताया इस कार्यक्रम में,
1: जी
0: क्या
1: बता देता
0: सुनेंगे?
1: हूँ,
0: जी बताइए।
1: आज की फिल्म का है कुमार सानू और अनुराधा पटवाल की, तुम मेरी जिंदगी हो।
0: आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन,
1: नमस्कार लक्ष्मी जी। जी
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेंद्र कुसार बोल रहा हूँ, नौ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।
0: कैसे हैं नरेंद्र जी?
1: बढ़िया है जी। जी आज आकाशवाणी सूत्रगढ़ से और आपसे बात कर बहुत खुशी हो रही है हमें।
0: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपके जो
1: जी
0: पत्र हैं वो हमें मिलते रहते हैं कार्यक्रम के जरिए। बात आपसे पहली बार हमारी भी हो रही है।
1: जी बात पहली बार हो रही है
0: तो नरेंद्र जी कैसे लगते हैं कार्यक्रम हमारे?
1: जी। आपके कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं, विशेषकर जो ये मेल पत्रों पर ईमेल पर प्रोग्राम आते हैं वो बढ़िया लगते हैं, और राजस्थानी जितने भी प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया लगते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो नरेंद्र जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना आप सुनेंगे
1: आज कोई आपकी पसंद का ही सुना दो।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: मेरे साथ है मेरा भाई विनोद सुथार, बेटा है मासू सुथार, और मेरी फर्नीचर की वर्कशॉप है उसके अंदर मेरा रेडियो चलता रहता है और साथ में काम भी करते हैं हम लोग, सभी सुनते हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: जी
0: कार्यक्रम, हेलो मन भावन।
1: हेलो मन भावन, चंडीगढ़ से सतीश शैलेजा बोल रहा हूँ। क्या
0: सतीश भाई कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है जी, आपके दवाओं से बहुत अच्छे हैं। गर्मी है, गर्मी में बस रेडियो का भी आनंद लेते हैं और मौसम का भी आनंद ले रहे हैं जो परमात्मा ने दिया है।
0: गर्मी यहाँ पर ज्यादा है, आपकी वहाँ कैसे हैं?
1: हमारे गर्मी तो है जी, लेकिन अभी 40 के डिग्री टेम्परेचर के करीब चल रहा है, कभी
0: फिर
1: 39 हो जाता
0: तो
1: है।
0: ठीक है, हमारे यहाँ 45 चल रहा है।
1: नहीं, इधर थोड़ा चंडीगढ़ का और राजस्थान में थोड़ा फर्क तो है ही नहीं।
0: बिल्कुल फर्क है।
1: और
0: तो
1: ऊपर से
0: सतीश
1: जो ये 9 तपे का जो अपनी आंखें दिखा रहा है,
0: जी,
1: उसको भी तो
0: बिल्कुल
1: हम सहर से उसको सत्कार करेंगे, जैसे भी परमात्मा ने दिन दिया हम निकालेंगे।
0: बिल्कुल, इस गर्मी में सतर्कता ही जरूरी है। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: सतीश भाई, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आकाशवाणी सूरतगढ़ जो है ना, बिल्कुल चरम सीमा पे जा रहा है, बहुत ऊंचाइयां जो हासिल कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, और जब से ये व्हाट्सएप पे प्रोग्राम किए तो
0: जी,
1: इससे भी श्रोताओं को काफी राहत मिली है, और बिल्कुल जो दूर दूर के श्रोता काफी जुड़े हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
0: बिल्कुल, आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: तो सतीश भाई, क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आज?
1: तो गीत लगा दो आप। दाग फिल्म का गीत है, नी मैं यार मनाना नी, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की बारी।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: बस इस टाइम तो घर में मैडम है जी।
0: जी, तो आप दोनों मिलके सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन,
1: जी नमस्कार जी। वेद
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मिड्डा बोल रहा हूँ जी, नाई वाला से।
0: वेद भाई कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया बहन, आप सुनाइए कैसी हो।
0: हम सब भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और बताएं क्या चल रहा है वेद भाई इन दिनों?
1: बस इन दिनों काम धंधे में लगे हुए।
0: कार्यक्रम सुनते रहते हैं हमारे,
1: हाँ जी हाँ जी, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम सुनता रहता।
0: तो इस कार्यक्रम में क्या पसंद है आपकी वेद भाई?
1: फिल्म कटी पतंग चाहिए, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: अलका मिड्डा है जी, मैडम विनोद बारासा है।
0: तो आप सभी मिलके सुनिए ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन
1: हेलो मैं
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मंसूरी रेडियो लेसर्स क्लब बाजार रोड में मंगुशापुर से बोल रहा हूँ। मोहम्मद जाकिर मंसूरी जी।
0: कैसे हैं जाकिर भाई?
1: बस अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
0: हम भी यहाँ पर अच्छे हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
1: बिल्कुल, कार्यक्रमों का मजा लेते रहते हैं अपने आकाशवाणी छत्तीसगढ़ का, और आज से नहीं 1998 से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत लंबा सफर तय किया आपने जाकिर
1: जी जी
0: भाई,
1: जी ऐसा लगता है सारे प्रोग्राम।
0: क्या करते हैं जाकिर भाई आप, अपने बारे में
1: बस
0: बताएं।
1: अपनी शॉप है, दुकान पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, वहाँ पर रेडियो चलता है आपका?
1: हाँ, इस वक्त मैं ऐप पर सुनता हूँ।
0: अच्छा, ट्रांजिस्टर पे नहीं सुनते, ऐप पे।
1: ट्रांजिस्टर मेरा खराब हो गया तो नया मिल नहीं पा रहा है।
0: चलिए, अभी तो जो नई टेक्निक आई है तो आप ऐप के थ्रू भी सुन सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जाकिर
1: गीत
0: भाई, इस कार्यक्रम में क्या पसंद किया है आपने?
1: फिल्म का गीत होगा महेंद्र कपूर की आवाज में,
0: जी, कौन सा
1: जिसके सपने हमें रोज आते रहे।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: मेरे साथ मेरा पूरा परिविवार है,
0: जी,
1: कमरू निशा मंसूरी, अविस्ता, लुबना, पलक, यश मंसूरी।
0: आप सभी मिलके सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भावन,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
1: मैं गांव धनासर तहसील रावसर से राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी।
0: राजेंद्र जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया जी, और आपके कार्यक्रम सुन के हम और अच्छे हो गए। 2003 से आपके प्रोग्राम रेगुलर सुन रहे हैं और आपके प्रोग्राम सुनते सुनते ही हमें नई ऊर्जा मिलती है कुछ करने।
0: बिल्कुल, आप सब ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। तो
1: जी
0: क्या करते हैं राजेंद्र भाई आप?
1: जी मैं प्राइवेट टीचर हूँ।
0: इन दिनों तो छुट्टियां होंगी फिर,
1: हाँ जी, इन दिनों गर्मी की छुट्टियां मिली हुई है तो आपके कार्यक्रम हम छुट्टियों के दौरान रेगुलर सुन रहे हैं।
0: तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं गाना सुनना चाहता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी ने क्या है, बूट पॉलिश फिल्म का।
0: बिल्कुल, हमारी तरफ से भी
1: जी
0: बहुत बहुत श्रद्धांजलि।
1: ये गाना सुनना
0: कौन
1: मेरे
0: कौन
1: को।
0: है आपके साथ? और
1: जी मेरे साथ मेरी वाइफ है चंद्रकला और हम सभी मिलकर कार्यक्रम सुनते हैं, सभी करके सबके।
0: आप सभी मिलके सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो मन भवन।
1: नमस्ते। मैं गांव बुडू जिला बलोदा से उम्मेदाराम बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं उमेदा भाई?
1: अच्छे हैं जी, बिल्कुल।
0: तो आज इस कार्यक्रम में पहली बार कॉल लगी है आपकी?
1: कार्यक्रम में अटैच में पहला कॉल।
0: बहुत खुशी की बात है। और उमेद भाई, आपकी आवाज़ थोड़ा सा साफ नहीं आ रही, तो आप पसंद का गीत बता दें।
1: पसंद का तीसरी कसम का कोई भी गीत,
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: सुरेश कुमार, सुरतेश गोदारा और वीर सिंह जी।
0: आप सभी मिलके सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम। हेलो मन भवन,
1: हेलो जी, नमस्कार
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं रमेश साहब बोल रहा हूँ जी।
0: रमेश जी कहाँ से?
1: हम बिहार बांका जिला गांव झिकुलिया का रहने वाला हूँ दीदी।
0: रमेश भाई कैसे हैं?
1: बस ठीक है दीदी।
0: तो इस कार्यक्रम में आपने पहली बार कॉल मिलाई है?
1: हाँ जी, आज पहले बार मेरा कॉल लगा है जी।
0: तो रमेश भाई अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप?
1: बस दीदी जी, मैं अपना गांव में खेती गृहस्थी का काम करता हूँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों खेती में?
1: इस समय तो अभी सब्जी का फसल चल रहा है और गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है बिहार बांका जिला।
0: बिल्कुल, इस समय गर्मी हर जगह पर ही है। इस कार्यक्रम में क्या सुनेंगे रमेश भाई?
1: आज मेरा पहले दिन फोन लगा है तो गाना सुना दीजिए नदिया के पार फिल्म का। गाने का बोल, कौनी दिशा में लेके चले रे बटोया।
0: और कौन कौन है आपके साथ?
1: बस दीदी, हमारे साथ पूरा फैमिली है।
0: तो सुनिए सभी मिलकर आपकी पसंद का ये गीत।

प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ ही हेलो मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की लक्ष्मी को दे इजाजत। आप सदैव मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। कुछ लम्हे सुर बनकर दिल में उतर जाते हैं, कुछ गीत मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। यूं तो खत्म हो जाती है हर महफिल एक दिन, मगर कुछ एहसास उम्र भर याद रह जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। इस कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया और तकनीकी सहयोग रहा जितेंद्र का। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मन भावन। प्रस्तोता थी लक्ष्मी। कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है।

0: एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।